0: पर हर रात की यही रीत, पुराने मगर सदाबहार गीत।
1: हम प्यार तुम्हें करते हैं, हमें अपना

0: हमें अपना बन। ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM
1: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
2: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
3: Southall Travel can take you there.
4: Southall Travel, at all protected.
5: ये बवाल बॉस के ऊपर जाएगा भाई।
6: पवन जी, मैंने सुना है आप दोनों के रिलेशंस अच्छे नहीं है।
7: आप सीधे सीधे आरोप लगा रही हो
8: भाई, निकाल माइक।
9: भाई भाई के कितना सुंदर।
10: The brand new reality TV show Bhojpuri Bawal, Monday to Sunday at 10 PM on Colors TV.
11: बजट टाइट पर ब्रांड का इम्पैक्ट बड़ा चाहिए? लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड लाए हैं आपके लिए परफेक्ट पैकेज। रेडियो, डिजिटल या इवेंट, सब कुछ मिलेगा कस्टमाइज्ड। जल्दी करिए, कॉल नाउ 0207-132-1458 या लिखिए sales@laikaradio.com।
12: रात भर न थमे न रुके, क्लासिक न घूमे, आपके अपने लाइका गोल्ड पर।
13: अभी न जाओ छोड़ कर।

0: लाइका गोल्ड। साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान, देखिए दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410। साउथ हॉल ट्रेवल, at all protected.
1: Mum, I'm outside. Yes, literally just landed.
2: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
1: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
2: And you didn't pay those massive roaming charges?
1: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
3: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100 plus countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply.
0: आवाजों में ताकत होती है जब वो सही जगह तक जाती है। लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड आपकी आवाज बन सकते हैं। ऑन एयर हो, ऑनलाइन या ऑन ग्राउंड, हर प्लेटफॉर्म पर आपका ब्रांड चमकेगा। संपर्क करें 0207-132-1458 या ईमेल sales@laikaradio.com।
4: सारी रात बॉलीवुड क्लासिक्स का साथ, सिर्फ लाइका गोल्ड पर।

ये रात है ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं हो।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहे लोगों को बता दें। हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

0: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM
1: लोकेशन लोकेशन लोकेशन
2: इन रियल एस्टेट लोकेशन इज एवरीथिंग एंड दिस वन इज अ विनर
1: इंट्रोड्यूसिंग ग्रीन्स बाय डैनियो अ प्रीमियम कलेक्शन ऑफ टाउनहाउसेस एंड विलास
2: लोकेटेड इन दुबई इन अ प्राइम लोकेशन फॉर हाई अप्रिसिएशन
1: स्टेप इनसाइड एंड वॉक इनटू फुल्ली फर्निश्ड टाउनहाउसेस एंड विलास विद प्रीमियम इटालियन फर्निशिंग्स
2: स्टेप आउटसाइड एंड एंजॉय 50+ एमिनिटीज इनसाइड द मास्टर कम्युनिटी
1: एंड द बेस्ट पार्ट टाउनहाउसेस एंड विलास ग्रीन्स स्टार्ट फ्रॉम जस्ट £711,000
2: टू बुक कॉल our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
1: High appreciation.
2: In Dubai.
3: You know how fans shout at football matches?
4: Oh, wake up!
3: That's because sound is the most effective way to tell the players they're rubbish. Works in advertising too. Because when you amplify your advertising using radio, your campaign is 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.
5: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
6: Relax, I've booked the Uber already.
5: How? My roaming isn't even working yet.
6: I switched to Simsy before we left London.
5: Simsy? Since when are you the tech expert?
6: Since I decided I want a stress-free holiday.
7: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simsy eSIM for affordable data in India and across the globe. Simsy, holiday travel simplified.
8: T's and C's apply.
0: सारी रात बॉलीवुड क्लासिक्स का साथ सिर्फ लाइका गोल्ड पर।

निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानको सी भी सच सोचे सोच न हो वही जे सोची लखवार।

सो मैं विसर ना जाई। जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए, नवा खंडा विच जाणी है नाल चले सब कोए। चंगा नाव रखाए कै जस कीरत जगले, जे तिस नदर ना

मन बुद्ध, मन्ने सगल पौन की शुद्ध, मन्ने मोह चोटा ना खाए, मन्ने जम के साथ ना जाए, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए, मन्ने मार्ग ठाक ना पाए, मन्ने पत्स्यों प्रगट जाए, मन्ने मग ना चले पंथ, मन्ने धर्म सेती संबंध।

वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह पक्षार, असंख मोन लिवलाए तार, कुदरत कौन कहा।

मूर्ख अंधगोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाए जोर असंख गलवड हत्या कमाए असंख पापी पाप कर जाए असंख कूड़े यार कूड़े फिराए असंख मलेच मल भक खाए असंख निंदक सिर करे भार नानक नीच कहे विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद भावे साई वलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख नाव असंख थाव अगम अगम असंख लो असंख कहे सिर भार होए।

तेरे भगत रसाले होर केते गावन से मैं चितनावन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है भी हो

तिस दी वड़ियाई, जो तिस भावे सोई करसी, हुक्म ना करना जाई। सो पातशाह साहिब नानक रहन जाई।

अनाद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश उगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वाजे नाद आप नाथ नाथी सब जाकी रिद सिद्ध

आद अनाहत जुग जुग एकोवेश आसन लो लोय भंडार जो कुछ पाया सो एका वार कर कर वेखै सृजनहार नानक सच्चे की साची।

जोर जोर ना जीवन मरण नहि जोर जोर ना राजमाल मंसोर जोर ना सुरती ज्ञान विचार जोर ना जुगति छुटै संसार जिस हाथ जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती चित्ती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथे सोहन पंच परवान।

0: लाइका गोल्ड। travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com।
1: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
0: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
1: विजिट travelhubworld.com।
2: Now make your money grow with ICICI Bank UK. Earn up to 4.8% on non-withdrawable fixed deposits.
3: Choose 1 to 3 year tenures and tap to open instantly in-app. Quick, simple and secure. Plus, explore savings accounts, bonds and more. All at your fingertips. Start saving today with ICICI Bank UK. ICICI Bank UK PLC is authorized by PRA and regulated by the FCA and PRA. TNCs apply.
4: Celebrate Diwali at the iconic Royal Albert Hall.
5: Join legendary singer Kavita Krishna Murthy.
4: Live on Sunday the 1st of November. An unforgettable evening of spectacular Bollywood and devotional songs.
5: With the Royal Philharmonic Concert Orchestra.
4: Get your tickets from royalalberthall.com and sanathanevents.org. Brought to you by Sanathan Events.
5: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
6: लंदन वालों ध्यान से सुन लो कि फर्नीचर की धमाकेदार फ्लैश सेल आ गई है। शानदार इटालियन और जर्मन डिजाइन वाले बेडरूम और डाइनिंग फर्नीचर पर भारी छूट का फायदा उठाइए। गद्दों और अलमारियों पर जबरदस्त कटौती, सभी दीवान सेट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त हेडबोर्ड, सभी सामान तत्काल डिलीवरी के लिए दस्तयाब है। जल्दी कीजिए, ये फ्लैश सेल सोमवार शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी। आज ही हमारे हैरो, पिकलवुड और स्लॉगो के शोरूम्स में आइए या फिर keyfurniture.co.uk पर जाएं।
7: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ 1890 पाउंड से पूरी तरह फिटेड, और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150-2025 और विजिट meraboiler.com। T&Cs अप्लाई।
8: मेगा ब्लॉकबस्टर धुरंधर। Mega Blockbuster Dhurandhar, 15th and 16th of August at 9 PM on Utsav Gold. Title sponsor Watchdog Security. Associate sponsor Lemfi.
9: Leica Radio Network, proud hospitality partner Ragasan.
6: नमस्कार, रवि शर्मा रोज आपकी सेवा में हाजिर होता हूँ। मंडे टू फ्राइडे जुड़िएगा मेरे साथ 10 से 1 बजे के बीच। मंडे टू फ्राइडे मनोरंजन विद रवि शर्मा।

0: Book now, visit starters.co.uk or call 0208-900-2323.
1: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home. Now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai, just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
2: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाए 0208839080 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
3: गोल्ड ब्रेकफास्ट विद काजल on Leica Gold.

0: ना।
1: क्यों छोड़ू?
0: प्लीज समझो ना।
1: क्या समझू?
0: वो लोग देख रहे हैं।
1: अरे तो देखने दो और जलेंगे।
0: अच्छा तो ये बात है, तो मैं और पास आऊं?
1: आओ ना।

0: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
1: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
2: Southall Travel can take you there. Southall Travel, at all protected.
3: 073-00-99-8823. नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेजन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को. सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे. विवेक हाउस वॉटफर्ड, बुक ऑन व्हाट्सएप 0730099823.
4: लोकेशन
5: इन रियल एस्टेट, लोकेशन इज एवरीथिंग. And this one is a winner.
4: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
5: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
4: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
5: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
4: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
5: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Daniel. Prime location,
4: high appreciation
5: in Dubai.
6: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाए 0208839080 और विजिट रागासन.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन.

0: now visit starters.co.uk or call 208-900-2323।
1: आपके घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है, इस दुख की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम संस्कार की सभी रस्में ओम फ्यूनरल केयर करके देंगे। कैंटन रोड वेस्ट लंदन और इल्फर्ड ईस्ट लंदन में ओम फ्यूनरल केयर्स वेल वर्स्ड प्रीस्ट्स कैरी आउट ऑल द राइट्स एंड रिचुअल्स इन इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल एंड अदर लैंग्वेजेस। कॉन्टेक्ट कीजिए कल्पेश पटेल ऑन 0208-922-3344 24 आवर लाइन।
2: किटी पार्टी हो या फैमिली का कोई भी ओकेजन हो या फिर बिजनेस रिलेटेड कोई भी गेट टुगेदर,
3: अब हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश एट विवेक हाउस गॉडफादर एंड को। स्वादिष्ट साउथ एशियन खाना, 5-course lunch सिर्फ £35, जबरदस्त एम्बियंस और कन्वीनियंट कार पार्किंग अवेलेबल एट हॉलिडे इन वॉटफर्ड। तो देर किस बात की, बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 07300998823।
4: लंदन वालों ध्यान से सुन लो कि फर्नीचर की धमाकेदार फ्लैश सेल आ गई है। शानदार इटालियन और जर्मन डिजाइन वाले बेडरूम और डाइनिंग फर्नीचर पर भारी छूट का फायदा उठाइए। गद्दों और अलमारियों पर जबरदस्त कटौती, सभी दीवान सेट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त हेडबोर्ड, सभी सामान तत्काल डिलीवरी के लिए दस्तयाब है। जल्दी कीजिए, ये फ्लैश सेल सोमवार शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी। आज ही हमारे हैरो, पिकलवुड और स्लॉग के शोरूम्स में आइए या फिर keyfurniture.co.uk पर जाएं।
5: Discover Malta and Gozo with a twin center island escape. Fly from a choice of UK airports year round and enjoy 3 nights in Malta. A ferry trip to Gozo for another 3 nights and more. Prices start from just £399 per person. For great deals on cruise and holidays, visit Skylord Cruise and Holidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.
6: Hey there, main hoon Bali Brambat. Catch me on my show Gold Afternoon.

0: सुमन कल्याणपुर ऑन द फोकस है, व्हाट अ क्लासिक कहती है झुकी झुकी नजर। जिंदगी और ख्वाब से आपने सुना ये प्यारा सा गीत, और उससे पहले फिल्म युद्ध से आपने सुना आई एम इन लव। रियली
1: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: Gold is trading at £97.19 per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley.
0: And the film we're looking for today?
1: Leica Radio 90s. Leica Radio Punjabi. Leica Gold 2. Now available on the Leica Radio mobile app.
0: Is, of course,

0: Morning Mantra, presented by Mantra Holidays, your friendly holiday partner for UK, Europe and other destinations. For your memorable holidays according to your taste and budget, call 0203-773-633 to book your dream holiday.
1: लाइका गोल्ड
2: ट्रेवल हब world.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन ट्रेवल हब world.com फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट ट्रेवल हब world.com
3: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
2: एट ऑल प्रोटेक्टेड
3: विजिट TravelHubWorld.com. What food में dinner plans? थोड़ा classy, थोड़ा देसी.
2: तो आइए Godfather and Co. Vivek House Bar and Kitchen.
3: From crispy starters, butter chicken, paneer tikka masala से बिरयानी तक, fresh bread and refreshing drinks. हर bite में लाजवाब flavors और vibe बिल्कुल premium.
2: Friends, family या special night out, इसे यादगार बनाइए. Visit Vivek House Watford. Call 01923-227274. बुक योर टेबल टुडे श्रावण के पवित्र महीने में करें भगवान शिव की आराधना परम पूज्य संत श्री चिन्मयानंद बापू जी के श्रीमुख से सुनिए श्री शिव महापुराण कथा 13 अगस्त से 19 अगस्त तक हिंदू सनातन मंदिर ईलिंग रोड वेम्बली में समय दोपहर बाद 3 बजे से शाम 7 बजे तक नित्य कथा और महाप्रसाद की पावन व्यवस्था का आनंद लें शिव महापुराण का अपने पूर्वज माता पिता के नाम से मूल पाठ डेली यजमान और सेवा के लिए संपर्क करें 07930271.
4: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home. Now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
5: Hey, फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क है ना
6: वेल शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन 4 मजेदार फ्लेवर्स
5: क्रंच कैन नॉट वेट सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ
7: एक ऐतिहासिक अने दिव्य अवसर पेरिस मा भव्य BAPS स्वामीनारायण मंदिर ना ग्रैंड ओपनिंग मा दर्शन नो लाभ आ पवित्र यात्रा मा जोड़ाओ अपना परिवार साथे जहां मळशे शांति भक्ति अने आनंद अने साथे आईफिल टावर सेन रिवर क्रूज अने पेरिस सिटी टूर नो आनंद मानो डिपार्चर 5 सितंबर ना मंत्रा हॉलिडेज कॉल करो 02037736333 मंत्रा हॉलिडेज व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा
8: लाइक अ रेडियो नेटवर्क प्राउड हॉस्पिटैलिटी पार्टनर रगासान 7 stations, 1 podcast, 1 mobile app. Advertise on Leica Radio Network, offering the largest Asian radio and digital content in the UK. Call 0207 132 1458 or sales at leicamedia.co.uk. Gold Breakfast with Kajal. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

अपने दिल में वो आग उधर भी होगी, जो आग है अपने दिल में वो आग उधर भी होगी। कभी हमने नहीं सोचा था।

0: This is Like a Gold. TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
1: TravelHub, best service with unbeatable price.
0: At all protected.
1: Visit TravelHubWorld.com.
2: किटी पार्टी हो या फैमिली का कोई भी ओकेजन हो या फिर बिजनेस रिलेटेड कोई भी गेट टुगेदर,
3: अब हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश एट विवेक हाउस गॉडफादर एंड को. स्वादिष्ट साउथ एशियन खाना, 5-course lunch सिर्फ £35, जबरदस्त एम्बियंस और कन्वीनियंट कार पार्किंग अवेलेबल एट हॉलिडे इन वॉटफोर्ड. तो देर किस बात की, बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 07300998823.
4: हॉन्स्लो, अब इंडिया का फेवरेट स्वाद बिल्कुल आपके पास.
5: बीकानेर वाला परंपरा भी स्वाद भी.
6: बीकानेर वाला में एंजॉय कीजिए फेमस छोले भटूरे, राज कचौरी, मिठाई और बहुत कुछ. आज ही आइए 101-105 हाई स्ट्रीट हॉन्स्लो, TW3 1QT. कॉल करें 07487-687-885.
7: Dreaming of Europe and the UK? Travel with Mantra Holidays and explore the breathtaking Scottish Highlands, the dramatic landscapes of Snowdonia and the stunning coast of Cornwall. Then journey through Europe from the majestic Swiss Alps to romantic Paris and the timeless beauty of Italy.
8: Visit mantraholidays.co.uk or call 020-377-3633 now. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
9: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 kW बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 020-8150-2025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply.
10: 40 million people listen to commercial radio each week. That's 80 million ears, give or take. Amplify your advertising at radiocentre.org.
11: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
12: Gold Breakfast with Kajal.

0: Book now, visit starters.co.uk or call 208-900-2323.
1: Anuj Chopra Foundation proudly presents An Evening of Elegance, hosted by Anisa Nasir. Taiyar ho jaiye ek yaadgar sham ke liye, jahan ghazals milti hai Bollywood se.
2: Jaam chalne lage.
1: With the legendary Anoop Chalota on Sunday, 30th August at Queen's Theatre, Romford. Doors open 5 PM. Show starts 6 PM. Ticket starts from £40. Book now at queens-theatre.co.uk. Radio partners like our radio network.
3: वॉटफुट में डिनर प्लान्स, थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी,
4: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन.
3: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स, बटर चिकन, पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक, फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स, हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम.
4: फ्रेंड्स, फैमिली या स्पेशल नाइट आउट, इसे यादगार बनाइए. विजिट विवेक हाउस वॉटफुट. कॉल 01923227274. बुक योर टेबल टुडे.
5: Dreaming of paradise?
6: Discover the Indian Ocean with Skylord Cruise and Holidays. Book exclusive Emirates holiday offers to Mauritius, the Maldives, Seychelles and Sri Lanka.
5: Choose from luxury beach escapes, family resorts and incredible multi-center holidays, all at exclusive prices.
6: Call Skylord Cruise and Holidays today on 01923

0: Good morning. स्वागत है संगीत प्रेमियों का मनोरंजन की दुनिया में। सोमवार वर्ष 2026 के अगस्त महीने की 3 तारीख और बहन भाइयों एक और मनोरंजन एक और संगीतमय मुलाकात प्यारे प्यारे श्रोताओं के साथ। माय नेम इज रवि शर्मा और मैं दोपहर बाद 1 बजे तक आपकी सेवा में हाजिर हूँ। आप बने रहेंगे मेरे साथ ये विश्वास है। पहले तो आप सब की ओर से धन्यवाद दें भाई काजल को। लेट मी रिमाइंड यू शी विल बी बैक टुमारो मॉर्निंग एक और ब्रेकफास्ट शो लेकर। 2400 घंटे सातों दिन आपकी सेवा में आपका अपना लाइका रेडियो नेटवर्क और भाई इसके रेडियो सुन में ये लाइका गोल्ड गोल्डन गीतों का खजाना आप भी लूट के ले जाना। गोल्ड प्योर गोल्ड 24 कैरेट। सोमवार पहले की ये खास सोमवार है श्रावण मास का पहला सोमवार और भाई जो लोग श्रावण सेलिब्रेट करते हैं भगवान शिव की आराधना करते हैं झूले पड़ते हैं गीत गाए जाते हैं भाई जो सेलिब्रेट करते हैं भले ही यहाँ वो श्रावण का एहसास नहीं है यहाँ तो वो ज्येष्ठ और आषाढ़ की गर्मी से अभी भी तपन जारी है लेकिन संगीत में तो श्रावण बुला सकते हैं।
1: Let's return to the biggest hits back to back. Sponsored by TravelHubWorld.com. For the best service and unbeatable prices, visit TravelHubWorld.com. TravelHubWorld.com.
2: हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता.
3: Travel Hub.
2: At all protected.
1: Leica. This is Leica Gold. Non-stop classics.

0: बैक टू बैक संगीत सुनवाया हमने आपको। और भाई दो गीत परोसे, पहला गीत सावन को रिप्रेजेंट करता हुआ पड़ गए झूले सावन ऋतु आई रे। बहुत सारी चीजें सावन के साथ जुड़ी हैं और श्रावण मास के साथ एक बात ये भी जुड़ी है कि भाई ये आधे हिंदुस्तान में तो लगभग यूँ शुरू हो चुका है, भारत के कुछ हिस्सों में ये शुरू होगा शुक्ल पक्ष के शुरू होने से, वहाँ मास का आरंभ जो है वो अमावस्या से होता है, जबकि कई क्षेत्रों में पूर्णमासी से नया मास अगले दिन से शुरू होता है। पर पूर्णमासी का मतलब यह है कि पिछला मास पूर्ण हो गया है, अब नया मास शुरू होता है तो वो कृष्ण पक्ष से शुरू होते हैं। खैर ये ज्योतिष की भाषा है, पर उत्तर भारत में श्रावण शुरू हो चुका है और पहला सोमवार है और भाई सोमवार को विशेष रूप से श्रावण मास की साथ जुड़ी हैं बहुत सारी पूजा पद्धतियां, लेकिन उसके साथ हरियाली, झूले, गीत, पतंगे, बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हैं श्रावण मास के साथ, क्योंकि गर्मियों का समापन होता है और भाई वो बारिश ऋतु, बारिशें शुरू हो जाती हैं, उसके बाद थोड़ा सा ठंडा मौसम शुरू होना होता है तो उसमें झूले पड़ते हैं, गीत गाए जाते हैं, पतंगे उड़ाई जाती हैं और हमारे यहाँ तो हरियाणा में पकौड़े बनाते हैं, गुलगुले बना करके भाई खाते हैं, खिलाते हैं, तो ये सब सेलिब्रेशन यहाँ नहीं हो सकते क्योंकि यहाँ तो अभी भी गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है। ऐसे में ठंडे ठंडे गीत भी कुछ परोसेंगे आपको जो शीतलता प्रदान करें, और ये शीतलता जो है ना ये प्रतीक है भाई चंद्रमा की, चांद शीतलता देता है, सूरज अगर गर्मी देता है तो रात को आप देखेंगे कि टेम्परेचर डाउन हो जाता है क्योंकि वो चंद्रमा की दी हुई शीतलता धरती पर पड़ती है। ठीक है साहब, सोमवार, सोम का मतलब भी चंद्रमा और उसकी शीतलता का जिक्र करेंगे आगे चल करके चिंतन में। फिलहाल दो गीत सुनवाने के बाद हम आपको बताते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा पाउंड का रेट। भारत में अगर पैसे भिजवाना चाहते हैं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके वाले फिर से याद दिलाते हैं आपको।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: And yes, it is competitive rate. एक पाउंड के बदले SBI UK वाले दे रहे हैं भारतीय करेंसी में 127.85 रुपीज, 127 रुपए और 85 पैसे। But you can transfer via branch, online or by using the Yono SBI UK mobile app.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
0: Yes, T and C's apply, don't forget that.
1: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM।
3: This part of the show is brought to you by 108 Base Hospital Uri. Starts 15th of August every Saturday and Sunday at 7 PM on Colors TV.
4: I hope Major Naina हम लोग वक्त पर पहुंचे।
5: Location, location, location.
6: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
5: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
6: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
5: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
6: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
5: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
6: To book, call our London office on 02023963-5757. Greens by Danube. Prime location.
5: High appreciation.
6: In Dubai.
7: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
8: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
7: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
8: गारंटेड
7: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल,
8: फोन 02085748410।
7: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
0: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फौरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागसन।
9: डैड, डैड, डैड, व्हाट्स रॉन्ग बेटा? The Indian rupee has skyrocketed and it's the best time to send money to Daddy in India.
10: I will run down to the money exchange now.
9: No, Dad, you can do it from your sofa. Download the Yono SBI UK mobile app and you'll get a fast service right from your phone.
10: Oi, bale bale. I'm going to tell all my friends to download the Yono SBI UK mobile app and take advantage of their competitive rates.
11: SBI UK regulated by the FCA and PRA.
12: South Hall, Desi Swad ka asli adda aa gaya hai.
13: Bikaner wala परंपरा भी
14: बीकानेर वाला में मिलेंगे फेमस छोले भटूरे, टेस्टी स्नैक्स, मिठाई और फैमिली के साथ यादगार मोमेंट्स. आइए 60 किंग स्ट्रीट साउथ हॉल UB2 4DB. कॉल 07795181001.
15: बी पार्ट ऑफ ए हिस्टोरिक ग्रैंड ओपनिंग.
16: एक्सपीरियंस द न्यूली इनॉग्रेटेड BAPS स्वामीनारायण मंदिर इन पेरिस. अ वंस इन अ लाइफ टाइम स्पिरिचुअल जर्नी.
15: ट्रेवल विद योर फैमिली एंड विटनेस दिस डिवाइन ओकेजन अलोंग विद द आईफिल टावर, सेन River cruise and a Paris city tour.
16: Departure 5th of September. Call now on 0203 773 633.
15: Mantra Holidays. What's your travel mantra?

0: Mamster નું પાણીપુરી અને પાણીપુરી નો પાણી.
1: All Mamster products are nut free and made in Canada. Now available at Quality Food branches.
2: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
3: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
4: इस गीत को आप सुन करके आपको लगेगा कि ये तो बहुत बार सुन चुके हैं, कुछ याद होने लगा है हमें ज़बानी ये गीत। भाई इस गीत के बारे में मैंने देखा हमारे कंप्यूटर पे एक बार नहीं, दो बार नहीं, पांच छह बार ये रिकॉर्ड किया गया। अरे पांच छह बार ये गीत जमा किया गया है हमारे ख़जाने में, तो भाई बजाना ही पड़ेगा। लेकिन साहब कंप्यूटर जी इतना मत बजाओ, और भी गीत इस फिल्म के बहुत अच्छे हैं, वो सुनवाइए, वरना लगता है कि ये मनोरंजन प्रोग्राम कर्नाटक संगीत का कार्यक्रम बन गया है।

0: प्रियतम।
1: भाई दिल ने पुकारा फिल्म का गीत है ये, रफी साहब और लता जी की आवाजों में। मेरे ही कार्यक्रम में कई बार बज चुका है, लेकिन इसी फिल्म में कुछ और गीत है जो दबे छुपे रह गए, उन्हें आगे लाइए ना कंप्यूटर जी। एक गीत आपको लगेगा जैसे पहली बार सुन रहे हैं, जबकि साहब मन्ना डे और आशा भोसले की आवाज में ये गीत इसी फिल्म से लिया है।

0: दिल है
1: तेरा दिल है
0: हाँ मेरा दिल
1: तेरा दिल है
0: मेरा दिल है
2: Feel Good Track Brought to you by Derry Valley.
3: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
4: Manoranjan with Ravi Sharma.
5: स्वागत है आपका लाइका गोल्ड पर. और बहनों भाइयों, खबरों का वक्त हुआ जाता है. एक खबर से रवि शर्मा परेशान हुआ जाता है. ऑलमोस्ट 200,000 पाउंड्स ऑफ फ्यूल स्टोलन फ्रॉम यूके फोर कोर्ट्स एवरी डे. मैं तो सोचता था भाई 200,000 पाउंड का पेट्रोल जो है चोरी हुआ है सिंस स्टार्ट ऑफ ईरान वार. नहीं, ये तो हर रोज हो रहा है. 200,000 पाउंड का ईंधन जो है पेट्रोल पंप से लोग डलवा के डाल के भाग जाते हैं. और ये जब से ईरान वार शुरू हुई है भाई, नेचुरली महंगा तो हुआ है, लेकिन उसका असर ये हुआ है ब्रिटेन में. कई लोग सवाल उठा रहे हैं भाई, यहाँ बढ़िया अजीब सी पद्धति है कि जो लोग काम करते हैं, जो टैक्स पे करते हैं, उन पर तो खर्चा भी बढ़ता है, सख्ती भी बढ़ती है. और जो लोग भाई इस तरह के काम करते हैं, आराम से बैठ के खाते हैं, या फिर आप ही बताइए, काम करने वालों को टैक्स भरना पड़े और बिना काम करने वालों को घर में बैठे पैसा मिले, तो फिर कौन काम करना चाहेगा? ये सवाल पूछा किसी ने, मेरा नहीं है कि आप जॉब नहीं करें ठीक है, आपको पैसे मिलेंगे तो कौन करना चाहेगा. ये एक सवाल पूछा किसी ने मुझसे, मेरे पास जवाब नहीं था, आपके पास हो तो दें. लेकिन ये खबर आपको भी परेशान करेगी. ऑलमोस्ट 200,000 पाउंड्स ऑफ फ्यूल स्टोलन फ्रॉम यूके फोर कोर्ट्स एवरी डे सिंस स्टार्ट ऑफ ईरान वार. चलिए साहब, ये तो खबर है, और क्या क्या खबरें हैं. समय हो गया है 10:30 बजे हैं ब्रिटिश घड़ियों में. लेट्स सी व्हाट वी हैव गॉट इन द न्यूज. लाइका रेडियो नेटवर्क. अब आप रवि शर्मा से आज की खास खास खबरें सुनिए. पहले भारत से आने वाली खबरों में, कर्नाटक में मुख्यमंत्री डी के शिवकुमार के शपथ ग्रहण के करीब 2 महीने बाद कैबिनेट का विस्तार किया जा रहा है. शिवकुमार सरकार के मंत्रिमंडल में नए मंत्रियों को, लगभग 20 मिनिस्टर्स को शामिल किया जाएगा. नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह यानी ओथ टेकिंग सेरेमनी आज शाम 4 बजे होने की संभावना है. इंटरनेशनल खबरों में, स्पेन में घुस रहे लोगों पर मोरक्को की होम मिनिस्ट्री ने एक बयान दिया है. सुना होगा ना आपने भाई, 60,000 से ज्यादा लोग समुद्र के रास्ते घुस गए स्पेन में, क्योंकि स्पेन के सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था कि अपनी जान की बाजी लगाकर कोई समुद्र के रास्ते अगर स्पेन में आता है भाई, तो उसकी बात सुनी जाए, उसको पकड़ के वापस ना धकेला जाए. मोरक्को की गृह मंत्रालय ने, होम मिनिस्ट्री ने संडे को कहा कि स्पेन के क्यूटा और मेलिला में बड़े पैमाने पर सीमा पार करने की कोशिश, सोशल मीडिया पर फैलाई गई भ्रामक जानकारी और मानव तस्करी नेटवर्क की एक्टिविटीज का नतीजा थे. मिनिस्ट्री ने एक बयान में कहा कि आंकड़ों से साफ हुआ है कि ये घटनाएं अचानक या अपने आप नहीं हुई हैं, इन घटनाओं के पीछे कई कारण रहे हैं, जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म का दुर्भावनापूर्ण इस्तेमाल और गलतफहमी फैलाने वाली सूचनाओं का प्रसार, मानव तस्करी गिरोहों की एक्टिविटीज और कानूनी एडमिनिस्ट्रेशन जानकारियों की गलत व्याख्या. एक तरह से भाई स्पष्टीकरण दिया है. भारत से आने वाली खबरों में एक खबर अभी भी आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय कुश्ती महासंघ के फॉर्मर प्रेसिडेंट ब्रिजभूषण शरण सिंह को आज दिल्ली की एक अदालत में महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के मामले में बरी कर दिया गया है. इस मामले पर पहलवान और कांग्रेस नेता विनेश फोगाट का रिएक्शन आया है. विनेश फोगाट ने इल्जाम लगाया कि शुरू से ही ये सरकार और ये सिस्टम ब्रिजभूषण को बचाने के लिए लगे हुए थे. कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक यानी फाउंडर अभिजीत दीपके ने कहा है कि वो अपना स्कॉलरशिप लेटर और एजुकेशन लोन से जुड़े डॉक्यूमेंट्स दिखाने को तैयार हैं, क्योंकि इल्जाम लगा रहे हैं भाई कि वो स्पॉन्सर्ड हैं, वो विदेशों से फंडिंग ले रहे हैं. इस पर अभिजीत दीपके ने कहा कि मैंने देखा कि किसी बीजेपी कार्यकर्ता ने मुझ पर RTI फाइल की है और वो जानना चाहते हैं कि मैंने अपनी एजुकेशन कैसे पूरी की. मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपके नेता अपनी डिग्री दिखाएंगे. भारत सरकार ने सीनियर भारतीय विदेश सेवा फॉरेन सर्विस के एक अफसर विश्वेश नेगी को ईरान में अपना एम्बेसडर अपॉइंट किया है। फॉरेन मिनिस्ट्री की ओर से जारी बयान के अनुसार साल 2002 के बैच के आईएफएस अफसर विश्वेश नेगी वर्तमान में मंत्रालय में ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर हैं और इन्हें भारत का अगला राजदूत ईरान में अपॉइंट किया जा रहा है। विश्वेश नेगी जल्द ही अपना कार्यभार संभालेंगे। बीजेपी के फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रमेश विधूड़ी का सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने जंतर मंतर पर हुए स्टूडेंट्स के प्रदर्शन पर टिप्पणी की है। इस पर कांग्रेस पार्टी का रिएक्शन आया है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है कि जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने वाले जेन जी पंचर लगाने वाले थे, छात्र नहीं थे। ये बात नरेंद्र मोदी के चहेते बीजेपी नेता रमेश विधूड़ी ने कही है। पहले मोदी ने युवाओं पर लाठियां, आंसू गैस के गोले और पैलेट गन चलवाई और इतने से मन नहीं भरा तो अपने गालीबाज नेताओं से देश के युवाओं को गालियां दिलवा रहे हैं, अपमानित करवा रहे हैं। ये बयान आया है कांग्रेस पार्टी की ओर से। जसप्रीत बुमराह क्रिकेटर श्रीलंका टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह आ रहे हैं जम्मू कश्मीर के आकिब नबी, उनको जगह मिली है। भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह श्रीलंका टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं। बुमराह की जगह जम्मू कश्मीर के ये बॉलर अब टेस्ट टीम में शामिल हो रहे हैं। दरअसल इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के दौरान बाएं घुटने की चोट से बुमराह अभी तक पूरी तरह उबर नहीं पाए हैं, जिसके चलते उन्हें टीम से बाहर रखा गया है। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ईरान पर नए फौजी हमले को टालने के फैसले के बाद कच्चे तेल की कीमतों में आज से 3 अगस्त को से 4% से अधिक की गिरावट दर्ज की जा रही है। ब्रेंट क्रूड $4.08 यानी 4.64% से टूटकर $83.85 प्रति बैरल पर आ गया है। और वहीं अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड $4.01 यानी 4.74 की गिरावट के साथ $80.66 प्रति बैरल कारोबार करता दिखाई दिया है। दूसरी तरफ सोने की कीमतों में मजबूती दर्ज की गई है। ट्रंप के फैसले से महंगाई और ब्याज दरों को लेकर चिंताएं कुछ कम हुई हैं। गाजा पट्टी पर इसराइल ने लगातार दूसरे दिन भी हवाई हमले किए हैं जिनमें बच्चों समेत 13 लोगों की मौत की खबर आ रही है। फलस्तीनी अधिकारियों के अनुसार हमले गाजा सिटी, खान यूनिस और दीर अल बलाह के रिहायशी इलाकों में किए गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने बताया ईरान के साथ कब से शुरू होगी बातचीत। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित बड़े सैन्य हमले को फिलहाल हमने टाल दिया है क्योंकि ईरान और मिडल ईस्ट में अमेरिका के सहयोगी देशों ने ऐसा करने का आग्रह किया था। इससे पहले ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा, ईरान और मिडल ईस्ट में अमेरिका के सहयोगी यानी मित्र देशों ने उनसे फौजी कार्रवाई रोकने का आग्रह किया था, अनुरोध किया था, क्योंकि समझौते की रूपरेखा लगभग तैयार हो चुकी है। ग्रीस में आग बुझाने के दौरान 2 हेलीकॉप्टर आपस में टकरा गए, पायलट समेत 2 लोगों की मौत की खबर आ रही है। इस हादसे में डेनमार्क के एक पायलट और ग्रीस की फायर सर्विस के एक संपर्क अधिकारी की मौत हो गई है, जबकि दूसरे ब्रिटिश पायलट और ग्रीक कोऑर्डिनेटर मामूली रूप से जख्मी हुए हैं। ये थे आज के प्रमुख समाचार। समाचार समाप्त होते हैं।
2: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.
5: लौट आइए अब फिर से संगीत की ओर। लाइका रेडियो नेटवर्क का ये मनोरंजन प्रोग्राम आप रवि शर्मा के साथ सुन रहे हैं और भाई सोने नहीं रहे हैं, आपके दिल की आवाज आप सुना भी रहे हैं। गीत के माध्यम से हम सुन पा रहे हैं कि दिल नहीं तोड़ेंगे, साथ नहीं छोड़ेंगे, कब तक? मरते दम तक, ये वादा रहा।

0: किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में ये गीत हमें ले आया है 11 बजे की खबरों के नजदीक। और भाई समाचारों में इंग्लिश फुटबॉल एसोसिएशन अपनी सपोर्ट वापस ले रहे हैं ज्ञानी इन्फेंटिनो के री इलेक्शन के मामले में, और री इसके ज्ञानी इन्फेंटिनो की के इस्तीफे के लिए उन पर दबाव बढ़ रहा है, देखते हैं क्या नतीजा निकलता है। लेट मी रिमाइंड यू दैट 11 o'clock न्यूज इज नेक्स्ट, और समाचारों के उस पर हमारी आपकी मुलाकात जारी रहेगी। चिंतन में आप सुनेंगे आज का विचार। न्यूज इज नेक्स्ट
1: अक्रॉस ग्रेटर लंदन। दिस इज लाइक अ गोल्ड 10:35 AM DAB एंड ऑनलाइन अ पार्ट ऑफ द लाइक अ रेडियो नेटवर्क।
2: द टॉप स्टोरीज दिस आवर। Gianni Infantino is coming under increasing pressure to leave his position as FIFA president. The English FA have followed their Welsh counterparts by sending a letter to football's governing body withdrawing their support for the head of global football. It's over his botched attempts to sell off stakes in the World Cup. Football journalist Henry Winter says this could be the end of Infantino's 10 years in charge.
3: The FA and the Welsh FA are saying we're not going to support you in March, but what is far more significant is what is actually going to happen now, because I think there are a lot of people who want him to resign. They want him to go now because he's taken this great sport and the world game to the brink of civil war.
2: A 9-year-old girl's died after being found seriously injured at an industrial estate in Arbroath just after midnight. A man's been arrested. There's a warning of some potential food shortages in the UK this winter because of the prolonged dry weather. The National Farmers Union says there's immense pressure on the dairy sector. Reform UK's promising to send the Royal Navy to intercept small migrant boats in the Channel if it gets into power. Labour's accusing the party of distractions. Ariana Grande's to take a break from public life when her tour ends. Her representative says it follows endless public scrutiny. Anna Bates reports.
4: The announcement comes days after she released a music video for new single Petal, which sparked comments online about her health. It's something the Wicked star addressed previously back in 2023.
5: I think we should be gentler and less comfortable commenting on people's bodies, no matter what.
4: She's pulled out of next year's London production of Sunday in the Park with George. Her tour brings a 10-night residency to the O2 beginning next week.
2: And Gatwick says a fault with its jet fuel supply has now been resolved. An alert was issued yesterday urging pilots there to fill up at other airports. From Sky News, I'm Fader Silver.
1: This is Leica Radio Network, officially London's number one Asian commercial radio group.
6: When your daughter's wedding guest list is double-sided, enjoy every hand-clapping second of it. Be a step ahead with Barclays Premier, with our best savings rates. Barclays, backing your future. Eligibility criteria apply. T's and C's apply.
1: Weather is brought to you by Southall Travel, taking you to the best destinations in the world.
0: Well, weather-wise, dry and mainly sunny this afternoon. It will be hot, or you can say very hot, because the temperature in London will be 33 degrees Celsius maximum, and in Midlands it will be 30 degrees Celsius. So, bhai, apna bachav rakhiyega. Aur tonight it will be dry again, clear sky and just a few patches of cloud, and a warm night it will be.
1: For special rates to India, Pakistan, Dubai, Maldives, Thailand, USA, Canada, Africa, Australia and New Zealand, call Southall Travel 24 hours a day, 7 days a week on 0208 574 8410.
7: मनोरंजन विद रवि शर्मा।
8: चिंतन चिंतन।
0: स्वागत है श्रोताओं का मनोरंजन कार्यक्रम की दूसरे दौर में। माय नेम इज रवि शर्मा। दोपहर बाद 1 बजे तक मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं, और बहन भाइयों इस समय ब्रिटिश घड़ियों में 11:04 हुए हैं। समय है चिंतन का, थॉट फॉर द डे, आज का विचार। और आज के विचार में हम आलेख शामिल कर रहे हैं रेडिंग से श्रीमती सरला कक्कड़ का। सरला जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको बधाई दे रही हैं श्रावण मास की, और कहती हैं कि श्रावण मास का प्रथम सोमवार है। प्रस्तुत हमारा विचार है, सबके साथ साझा कीजिएगा। कहती है, एक बार हमने एक महात्मा को तपस्या करते देखा। अपने शरीर को कष्ट देकर प्रभु का स्मरण करना वह तप कहलाता है। कुछ महात्मा एक टांग पर खड़े होकर के कुछ कावड़ लेकर के यात्रा करते हैं हरिद्वार से और अपने भाई इष्ट देव की अपने लोकल मंदिर तक। एक महात्मा को हमने चारों तरफ आग जलाकर बीच में खड़े होकर अपने आप को तपाते हुए देखा। अभी पिछले दिनों से कुछ दिन ये भाई भयंकर गर्मी पड़ी तो हम लोग तो सहन नहीं कर पा रहे थे, बिल बिल आ गई। लेकिन भारत में इससे ज्यादा भी टेम्परेचर होता है और लोग अपने आप को गर्मी के लिए अभ्यस्त बना लेते हैं। वहां भी सर्दियां आती हैं, वहां भी तरह तरह के मौसम हैं, लेकिन हर तरह के मौसम में एडजस्ट होने के लिए अपने आप को तपाना पड़ता है, तप करना पड़ता है। और तप बहनों भाइयों तपस्या का ही दूसरा पर्याय है। कच्ची मिट्टी से बनी ईंटों द्वारा जो घर बनाया जाता है वो वर्षा में गलने लगता है, कच्ची मिट्टी का बना हुआ। लेकिन अगर उन्हीं ईंटों को तपा लिया जाए, पका लिया जाए, तो भवन मजबूत बनकर के बरसों खड़ा रहता है। धातुएं खदान से कच्ची अवस्था में निकलती हैं, भट्टी में तपा कर उन्हें मजबूत बना करके उनसे औजार, हथियार, जेवर कुछ भी बना सकते हैं। कच्चा अन्न खा लेने पर हर कोई उन्हें पचा नहीं सकता, लेकिन उन्हें सुपाच्य यानी पाचन के योग्य, डाइजेस्टेबल, उपयोगी बना लेने के लिए पूर्व आग के सानिध्य में लाना होता है। आयुर्वेद के रसायनवेता कई प्रकार की गुणकारी भस्में बनाते हैं, यानी तप जो है वो व्यक्ति को मजबूत बनाता है, सहनशील बनाता है। आज सोमवार है, प्रथम सोमवार, और भगवान शिव के उपासक विशेष रूप से आराधना करते हैं भगवान शंकर की, जो स्वयं अपना एक तपस्वी रूप प्रकट करते हैं, स्थापित करते हैं। आप उन्हें समाधि अवस्था में राख लपेटे हुए एक तपस्वी के रूप में देखते हैं, दर्शन करते हैं। उनकी सहन शक्ति देखिए, तमोगुणी लोगों के बीच, राक्षसों और जो तमोगुण को रिप्रेजेंट कर, उन ऐसे लोगों के बीच रहकर भी वो अपना सतोगुण बनाए रखते हैं। वैसे तो वो गुणातीत हैं, गुणों से परे हैं। तप और शाम से ही भगवान बुद्ध को बुद्धत्व मिला था। कष्ट सहना और कष्ट सह करके बैलेंस बनाए रखना तप कहलाता है। तप करने से व्यक्ति मजबूत बनता है। अब देखिए, भगवान शिव हम सबके भीतर निवास करते हैं उसी तपस्वी रूप में। अगर हमारे भीतर से शिव तत्व निकल जाए, यानी ईश तत्व, ईश्वर निकल जाए, तो फिर शिव के बिना हमारा शरीर शव कहलाता है। शव यानी डेड बॉडी, शिव यानी वो ईश्वर, ईश।
8: चिंतन।
0: अब याद रखिए, शास्त्र कहते हैं जिसे आप आत्मा कहते हैं, जिसे आप स्पिरिट कहते हैं, सोल कहते हैं, रूह कहते हैं, वो परमात्मा का अंश हम सबके भीतर है। और जब तक वो हमारे भीतर है तभी तक तो हम जीवात्मा हैं। वो निकल जाए तो शब, अब उसे मेंटेन रखना, स्वस्थ रखना, उसको समझना, यही तो तप है। सरला जी बहुत बहुत बधाई दे रही हैं प्रथम सोमवार की, और कहती हैं कि आज श्रावण मास का प्रथम सोमवार है, इसलिए कोई शिव भजन सुनवा करके कृतार्थ कीजिएगा अवश्य। इसके साथ ही भाई हमें और भी बहुत सारे श्रोताओं की फरमाइश आई है, जिनमें हमारी वत्सला जी शामिल हैं, और हमारी हिना जी शामिल हैं। तो भाई आप सबको भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो और श्रावण मास आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो, ऐसी हम कामना करते

0: चिंतन।
1: अभी आप सुन रहे थे आज का चिंतन, आज का विचार, जिसके लिए आलेख रेडिंग से श्रीमती सरला कक्कड़ ने भिजवाया था। और भाई आज जो गीत हमने आपको सुनवाया श्रावण मास का, ये बैल की सवारी, विशाल भारद्वाज की आवाज में, विशाल और साथियों की आवाजें थी और टीटू शर्मा ने इसका संगीत तैयार किया विशेषकर श्रावण मास के लिए भगवान शिव की आराधना में। ये संगीत आज के चिंतन के साथ जोड़कर हमने प्रस्तुत किया। और इसी संदर्भ में भाई बहुत सारे मैसेजेस हमें आ रहे हैं। वत्सला जी, आपने और भी फरमाइशें भेजी हैं भगवान शिव के गीतों की। अरुणा, भूपेंद्र पटेल, विमल रायन, जगदीश बुशी से सहर, नीला चौधरी, सुनीता शर्मा और नरेंद्र पांचाल, हरविंदर जी, भरत गंगाराम, भाई आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद चिंतन को और इस गीत को सराहने के लिए। और श्रावण मास में ऐसे और भी गीत आपको सुनने को मिलेंगे। आज का चिंतन, आज का विचार तप की महिमा को बखान करता हुआ एक बार फिर से सरला जी का धन्यवाद करते हैं। और भाई धन्यवाद देते हैं विशाल भारद्वाज और टीटू शर्मा को इतना सुंदर गीत श्रावण मास में शामिल करवाने के लिए। चिंतन हर रोज मंडे टू फ्राइडे 11 बजे की खबरों के बाद मनोरंजन प्रोग्राम का हिस्सा बनता है। आज का चिंतन अब समाप्त होता है। श्रावण मास की आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। भगवान शिव आप पर कृपा करें, आपके घरों में सुख शांति का भंडार भरें।
0: चिंतन चिंतन
2: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
1: Well, State Bank of India UK telling that the rates are good, but if you want to send money to India, the rate is for £1 today they are giving 127.85 इंडियन रुपीज, 127 रुपए और 85 पैसे एक पाउंड के बदले मिल रहे हैं। दैट इज मैक्सिमम यू कैन ट्रांसफर वाया ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो एसबीआई यूके मोबाइल ऐप।
2: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
3: Ye hai Leica Gold.
0: Leica Gold.
4: This part of the show is brought to you by 108 Base Hospital Uri. Starts 15th of August every Saturday and Sunday at 7 PM on Colors TV.
5: I hope Major Naina, hum log waqt par pahunche.
6: Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410 and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
7: No more worries for me or you.
8: Southall Travel, at all protected.
9: Now make your money grow with ICICI Bank UK. Earn up to 4.8% on non-withdrawable fixed deposits.
10: Choose 1 to 3 year tenures and tap to open instantly in-app. Quick, simple and secure. Plus, explore savings accounts, bonds and more. All at your fingertips. Start saving today with ICICI Bank UK. ICICI Bank UK PLC is authorized by PRA and regulated by the FCA and PRA. TNCs apply.
11: Location, location, location.
12: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
11: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
12: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
11: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
12: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
11: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
12: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
11: High appreciation.
12: In Dubai.
13: आपके घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है, इस दुख की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम संस्कार की सभी रस्में ओम फ्यूनरल केयर करके देंगे। कैंटन रोड वेस्ट लंदन और इल्फर्ड ईस्ट लंदन में ओम फ्यूनरल केयर्स वेल वर्स्ड प्रीस्ट्स कैरी आउट ऑल द राइट्स एंड रिचुअल्स इन इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल एंड अदर लैंग्वेजेस। कॉन्टैक्ट कीजिए कल्पेश पटेल ऑन 0208922334 24 आवर लाइन।
14: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home, now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
15: Attention, the ITEC Desi Independence Food Festival and Trade Week is on from the 3rd to the 9th of August at ITEC Cash & Carry Southall, with unbeatable wholesale deals on rice, dairy, frozen foods, fresh produce, catering, essentials and much more. Don't miss live tastings on the 5th and 6th of August, plus exclusive offers all week. Visit Unit 123 Southbridge Way, Southall, UB2 4AX or call 0203 393 5225. ITEC Wholesale, open 24/7, everything your business needs, all under one roof.
16: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय.
17: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस.
16: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस.
17: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम.
16: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस.
17: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com. Limited offer. Terms and conditions apply.
15: Creative Team Events and Peace Nation UK brings to you the King of Sufi Music, Lakhvinder Vidali, to London and Birmingham this October. For sponsorship inquiries, call 07959-250-376.
18: 24 days South America in November or April. First 10 passengers up to 300 off. Call Sona Tours on 0208-951-0111 or visit sonatours.co.uk.
19: On this week's Leica Extra podcast, Kush and Deep Raja discuss honour-based abuse.
20: When people are going to get help, those additional perpetrators aren't necessarily being recognised. The primary perpetrator, the husband, was captured, but, you know, the rest of the key players behind the scenes weren't recognised. And we need to kind of be talking about this more so the professionals can catch, you know, all of the perpetrators of this abuse that carry it out.
19: Leica Extra is here. Search for our podcast, Leica Extra, on all major streaming platforms. Let's return to the biggest hits back to back. Sponsored by TravelHubWorld.com. For the best service and unbeatable prices, visit TravelHubWorld.com. TravelHubWorld.com.
21: हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता.
22: Travel Hub.
21: At all protected.
19: Leica. Cool music for a super hot summertime. On the Leica Radio Network.

0: बड़ा क्रांतिकारी गीत था भाई, इनकलाब लाने वाला। जरूर फिल्म का नाम रहा होगा कोई किसान मजदूर मेहनत कश, मजदूर था फिल्म का नाम। 1983 की फिल्म थी और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका संगीत रवि साहब ने तैयार किया होगा। महेंद्र कपूर और साथियों की आवाज़ें थी। बहुत अच्छा संदेश था इस गीत में भाई, प्रोटेस्टर्स को याद कर लेना चाहिए, काम आएगा। थैंक यू वेरी मच। बैक टू बैक संगीत के तहत जो पहला गीत था वो सावन को रिप्रेजेंट कर रहा था और ये जो दूसरा गीत था ये मेहनत को रिप्रेजेंट कर रहा था भाई। दोनों गीत बैक टू बैक सुनवाने के बाद हम आ गए हैं इस मोड़ पर कि आपको ले चले कहाँ, यहाँ यहाँ।
1: This is Like a Gold. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
0: कुछ सपने बड़े सुहाने होते हैं, पर सपने तो सपने हैं, वो तो अपने कहाँ, वो तो बेगाने होते हैं।

0: company.
1: Feel good track. Brought to you by Derry Valley.
0: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: मैं बोल भले ही तीखे हो लेकिन संगीत बहुत मीठा था इस गीत में. सपने हैं सपने, कब हुए अपने, दर्द में भी मिठास होता है.
3: मनोरंजन विद रवि शर्मा.
2: लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट. भाई आपको बता दें, हमारे यहाँ से जो पॉडकास्ट सीरीज चल रही है ना, उनमें नया एपिसोड शामिल हो चुका है, एपिसोड नंबर 27, ऑनर बेस्ड अब्यूज. भाई ये एक बहुत ही ज्वलंत टॉपिक है और इस पर बात कर रहे हैं, ऑनर बेस्ड अब्यूज इन आवर देसी कम्युनिटीज, एन इम्पोर्टेंट कन्वर्सेशन रूटेड इन ट्रूथ. एक ऐसी कड़वी सच्चाई जिसे भाई एक्सेप्ट करना पड़ेगा, पाई जाती है, आप इसे दबा नहीं सकते, छुपा नहीं सकते. करेज एंड चेंज दैट इज नीडेड व्हेन लोग क्या कहेंगे, कोई क्या सोचेगा, क्या, इस डर से ना हम कितने ऐसे गलत फैसले लेते हैं. एंड इट्स नॉट जस्ट वुमन, दिस ऑल्सो अफेक्ट्स मैन, चिल्ड्रन, कई, इसका असर पूरे परिवार पर ही पड़ता है. तो ये एपिसोड देखना मत भूलिएगा. लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेजन, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स. द न्यू एपिसोड इज ऑनर बेस्ड अब्यूज. दीप राजा और खुश इसे होस्ट कर रहे हैं और बहुत ज्वलंत टॉपिक है, देखना मत भूलिएगा.
1: लाइका एक्स्ट्रा इज हियर. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
4: From the first time they lose a
5: baby tooth, look, Mum,
4: to the countless times they forget to mention their
6: ingredients for food tech tomorrow,
4: to the last time you hear that school was
7: yeah, right.
4: Kids grow up fast. Luckily at Tesco, we have back-to-school uniform that grows with them, including everything they need like trousers and skirts with adjustable hems and waists. So you can focus less on the cost and more on all this. Tesco, every little helps. Available in the majority of larger stores and online.
8: Ye hai Laika Gold, 10:35 AM.
9: Us kids are mesmerized by the mundane, entranced by the everyday. Where grown-ups see a snail, we see a slippery-shelled beast from the undergrowth. But around 1 in 5 young children have a sight condition that can get in the way of all that wonder. The good news is, if these are found early, they can be managed or corrected. So book your child a free eye test at Specsavers today. Find out more at specsavers.co.uk/kidstests.
2: TravelHubWorld.com. कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays, हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
10: TravelHub, best service with unbeatable price.
2: At all protected.
10: Visit TravelHubWorld.com.
2: लंदन वालों ध्यान से सुन लो कि फर्नीचर की धमाकेदार फ्लैश सेल आ गई है. शानदार इटालियन और जर्मन डिजाइन वाले बेडरूम और डाइनिंग फर्नीचर पर भारी छूट का फायदा उठाइए. गद्दों और अलमारियों पर जबरदस्त कटौती, सभी दीवान सेट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त हेडबोर्ड, सभी सामान तत्काल डिलीवरी के लिए दस्तयाब है. जल्दी कीजिए, ये फ्लैश सेल सोमवार शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी. आज ही हमारे हैरो, पिकलवुड और स्लॉगो के शोरूम्स में आइए या फिर UK पर जाएं.
11: Dad, Dad, Dad!
12: What's wrong, beta?
11: The Indian rupee has skyrocketed and it's the best time to send money to Daddy in India.
12: I will run down to the money exchange now.
11: No, Dad, you can do it from your sofa. Download the Yono SBI UK mobile app and you'll get a fast service right from your phone.
12: Oi, bale bale. I'm gonna tell all my friends to download the Yono SBI UK mobile app and take advantage of their competitive rates.
11: SBI UK regulated by the FCA and PR.

0: ਅਤੇ ਗੋਲਗੱਪਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ।
1: All Mamster products are nut free and made in Canada. Now available at your nearest Asian grocery store. Mum always said, Beta, clove and neem keep the mouth healthy. Now that same trusted wisdom comes from Baidyanath, over 100 years of Ayurvedic legacy in Siddhayu toothpaste. Fresh breath, strong gums, pure herbal care. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK. Siddhayu, Ayurveda that fits your life.
2: एक ऐतिहासिक अने दिव्य अवसर पेरिस मा भव्य बीएपीएस स्वामीनारायण मंदिर ना ग्रैंड ओपनिंग मा दर्शन नो लाभ। आ पवित्र यात्रा मा जोड़ाओ आपना परिवार साथे, जहां मळशे शांति भक्ति अने आनंद अने साथे आईफिल टावर सेन रिवर क्रूज अने पेरिस सिटी टूर नो आनंद माणो। डिपार्चर 5 सितंबर ना मंत्रा हॉलिडेज। कॉल करो 0203-773-6333। मंत्रा हॉलिडेज, व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा।
3: इल्फर्ड, अब असली इंडियन फ्लेवर्स का मजा लीजिए।
4: बीकानेर वाला परंपरा भी,
5: फेमस छोले भटूरे, राज कचौरी, मिठाई और बहुत कुछ आपका इंतजार कर रहा है। मिलते हैं 513-519 क्रैनब्रुक रोड, गैंसल, इल्फर्ड, IG26HA। कॉल 0755-506015।
6: लाइक रेडियो नेटवर्क प्राउड हॉस्पिटैलिटी पार्टनर रगासन।
7: And its eyes are sticking out of its tentacles. It looks like an ice cream.
8: Ella sees a lot more than just a snail. With free kids' glasses from Specsavers, plus a second pair from £10, they'll see a world of wonders. And you'll see a great deal too. So book them an appointment at Specsavers today for free. £10 second pair with free glasses from our £65 and above range.
7: Conditions apply. See online for details.
9: Like a Cool, London ka number one Asian retro music station. Ab available hai Greater London mein 10:35 AM par. DAB Digital Radio पर Alexa पे बोलो Play Like a Gold और online सुनो LikeAGold.com पे।
10: It's summer on the Leica Radio Network.

खफा हो के चेहरा छुपा ले मगर याद रख हुस्न वाले जो है आग तेरी जवानी मेरा प्यार है सर्द पानी मैं तेरे गुस्से को ठंडा ना कर दूँ।

0: for high appreciation.
1: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
0: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
1: And the best part, townhouses and villas greens start from just £711,000.
0: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
1: high appreciation
0: in Dubai.
2: श्रावण के पवित्र महीने में करें भगवान शिव की आराधना। परम पूज्य संत श्री चिन्मयानंद बापू जी के श्रीमुख से सुनिए श्री शिव महापुराण कथा। 13 अगस्त से 19 अगस्त तक हिंदू सनातन मंदिर ईलिंग रोड वैमली में। समय दोपहर बाद 3 बजे से शाम 7 बजे तक। नित्य कथा और महाप्रसाद की पावन व्यवस्था का आनंद लें। शिव महापुराण का अपने पूर्वज माता पिता के नाम से मूल पाठ, डेली यजमान और सेवा के लिए संपर्क करें 07930271934।
3: Mum, I'm outside. Yes, literally just landed.
4: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
3: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
4: And you didn't pay those massive roaming charges?
3: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
5: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100 plus countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply.
6: 07300998823। नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेजन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को। सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे। विवेक हाउस वॉटफर्ड, बुक ऑन व्हाट्सएप 07300998823।
7: Discover Malta and Gozo with a twin center island escape. Fly from a choice of UK airports year round and enjoy 3 nights in Malta. A ferry trip to Gozo for another 3 nights and more. Prices start from just £399 per person. For great deals on cruise and holidays, visit Skylord Cruise and holidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.
8: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply.
9: Tune in to Leica Gold, London's number one Asian retro station on the Leica Radio mobile.

ये गीत हमें खबरों के पास ले जा रहा है। भाई आपको बता दें कि खबरों में जो मेन समाचार है, एक तो ये कि स्पेन ने मोरक्को के माइग्रेंट्स को वापस मोरक्को भेजा है। अभी थोड़ी देर पहले ये खबर आ रही है कि उन्हें ढूंढ ढूंढ के वापस भेजा जा रहा है। और दूसरी खबर फीफा से, ग्लोबल फुटबॉल के प्रेसिडेंट को भाई दोबारा इलेक्शन से रोकने के लिए विरोध बढ़ रहा है। खबरों के उस पार हमारी आपकी मुलाकात जारी रहेगी, बने रहिएगा हमारे साथ।

0: सब कुछ छोड़ देगा लेकिन अनु मलिक गाना नहीं छोड़ेगा, जरूर गाएगा। संगीत की धुनें तो अच्छी बनाते हैं भाई मलिक साहब, लेकिन कहीं कहीं ऐसा लगता है कि अगर वो किसी और एस्टेब्लिश सिंगर से गवा लेती है गीत तो कितना जबरदस्त होता, पर अब भी अच्छा है, बहुत बढ़िया गीत है।
1: ऐसे रब की मैं, ऐसे रब की मैं बंदगी ना छोड़।
0: उस्ताद था फिल्म का नाम, गा रही थी लता मंगेशकर और अनु मलिक। और इससे पहले कोयल बोली दुनिया डोली, दैट वाज अ सॉन्ग फ्रॉम फिल्म सरगम 1979। प्रोग्राम के तीसरे और अंतिम दौर में स्वागत है आपका भाई। आज मैं देख रहा था किस किस का जन्मदिन है, तो भाई उनमें से एक का जिक्र करेंगे आगे चल करके। बाकी और बहुत सारे लोग अपना जन्मदिन मना रहे हैं, हमारे श्रोताओं में भी कईयों का जन्मदिन है, उन्हें हम मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे कहेंगे और कोई गीत भी, एक साझा गीत उनके नाम लगा देंगे। लेकिन एक और भी संदेश आया है डेडिकेशन का, उसको प्रोग्राम में शामिल करने से पहले आपको बता दें कि SBI UK क्या रेट दे रहे हैं पाउंड का इस समय।
2: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with YONO SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: State Bank of India UK offering 127.35 Indian rupees for 1 pound. 127 rupees और क्षमा कीजिए 35 पैसे नहीं 85 पैसे 85 ये मैक्सिमम है। 127 रुपए 85 पैसे मैक्सिमम 127.85 रुपीज। यू कैन ट्रांसफर वाया ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो SBI UK मोबाइल ऐप। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
2: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया UK ऑफर्स सेविंग्स प्रोडक्ट्स, बिजनेस बैंकिंग, बाय टू लेट मॉर्गेजेस एंड सेफ डिपॉजिट लॉकर्स। विजिट sbiuk.statebank टू लोकेट योर नियरेस्ट ब्रांच। टीस एंड सीज अप्लाई।
3: ये है लाइका गोल्ड।
4: This part of the show is brought to you by 108 Base Hospital Uri. Starts 15th of August every Saturday and Sunday at 7 PM on Colors TV.
5: I hope Major Naina, hum log waqt par pahunche.
6: Location, location, location.
7: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
6: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas.
7: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
6: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
7: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
6: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
7: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
6: High appreciation.
7: In Dubai.
8: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 02085748410। दैट्स 85748410।
9: साउथ हॉल ट्रेवल, atoll protected.
10: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalog today. Call on 0208 507 7900 or download the catalog from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
11: लंदन वालों ध्यान से सुन लो कि फर्नीचर की धमाकेदार फ्लैश सेल आ गई है। शानदार इटालियन और जर्मन डिजाइन वाले बेडरूम और डाइनिंग फर्नीचर पर भारी छूट का फायदा उठाइए। गद्दों और अलमारियों पर जबरदस्त कटौती, सभी दीवान सेट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त हेडबोर्ड, सभी सामान तत्काल डिलीवरी के लिए दस्तयाब हैं। जल्दी कीजिए, ये फ्लैश सेल सोमवार शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी। आज ही हमारे हैरो, पिकलवुड और स्लॉगो के शोरूम्स में आइए या फिर keyfurniture.co.uk पर जाएं।
10: Attention, the ITEC Desi Independence Food Festival and Trade Week is on from the 3rd to the 9th of August at ITEC Cash and Carry Southall, with unbeatable wholesale deals on rice, dairy, frozen foods, fresh produce, catering, essentials and much more. Don't miss live tastings on the 5th and 6th of August, plus exclusive offers all week. Visit Unit 123 Southbridge Way, Southall, UB2 4AX, or call 0203 393 5225. ITEC Wholesale, open 24/7, everything your business needs, all under one roof.
12: Be part of a historic grand opening.
13: Experience the newly inaugurated BAPS Swaminarayan Mandir in Paris. A once-in-a-lifetime spiritual journey.
12: Travel with your family and witness this divine occasion, along with the Eiffel Tower, Seine River cruise and a Paris city tour.
13: Departure 5th of September. Call now on 0203-773-633.
12: Mantra Holidays. What's your travel mantra?
14: Have you noticed the way fans shout at football matches?
15: Oh, wake up!
14: That's because conveying your message with sound is the most effective way to communicate to the players on the pitch that they're rubbish. And this works in advertising too. You see, research shows how brands that use radio to amplify their advertising are 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.
16: Like a Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and likeagold.com.
17: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Like a Extra. Stream it now and be a part of the conversation.
0: और बहन भाइयों, इस सप्ताह के कलाकार वो हैं जिनका जन्म बंगाल में हुआ था और साहब कोलकाता प्रेसिडेंसी, उस समय नाम था उसका बंगाल प्रेसिडेंसी में कोलकाता में, और साहब अपने ज़माने के बड़े हैंडसम हीरो रहे। आजकल तो क्योंकि अब भाई उम्र के उस पड़ाव पर पहुंचे हुए हैं कि वो चेहरे पे वो रौनक नहीं है, अब उनकी तस्वीर देखकर पहचानना भी मुश्किल है कि वो अपने ज़माने के बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही हिट हीरो रहे हैं। नाम है उनका, पल बंगाली में उन्हें कहेंगे विश्वजीत। वैसे विश्वजीत होता है पूरे संसार को जीतने वाले का नाम, विश्वजीत, लेकिन वो हैं विश्वजीत। और साहब कई हिट फिल्में उन्होंने दी, उनके बारे में बहुत सारी जानकारी तो बाली भाई जुटा के लाते हैं अक्सर, पर आज और इस सप्ताह भर उनकी फिल्मों के गीत गूंजेंगे, क्योंकि विश्वजीत इज द आर्टिस्ट ऑफ द वीक। जा मेरी जान पर आई है बन तेरे बगैर, जा मेरी बनाई जान पर तेरे बगैर, एक एक पल है साल बराबर तेरे बगैर। किस काम की दौलत हो खुशी न हो भले शोहरत, मेरे लिए है पांव की ठोकर तेरे बगैर। तू रूह है मेरी सोच बेजान मका की, खाने को दौड़ता है मुझे घर तेरे बगैर। तू है तो दुनिया हंसी है, तू नहीं तो कुछ भी नहीं है।

0: रवि साहब की बनाई धुन पर लता जी और रफी साहब का गाया ये गीत भाई अपने जमाने का सुपरहिट गीत था और पिक्चराइज हुआ था विश्वजीत और माला सिन्हा पर। विश्वजीत है इस सप्ताह के कलाकार आर्टिस्ट ऑफ द वीक और भाई उनकी फिल्मों के बहुत सारे गीत आपको सुनने को मिलेंगे।
1: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
0: और भाई भाइयों ये जो प्रायोजित गीत है ये जा रहा है एक होने वाले कपल के नाम रोहन और निशा की सगाई हो गई है लेकिन गीत कह रहा है कि होने वाली है भाई शादी होने वाली है और सगाई और इसके लिए भाई फरमाइश आई कहाँ से मेडन हेड से रजनी ने फरमाइश की है कि भाई इनकी मंगलमय जोड़ी के नाम गीत लगा दीजिए। सरला कक्कड़ जी की भी फरमाइश है कि भाई ये दोनों बच्चे शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं और इनके लिए गीत तो बनता है तो भाई मेडन हेड में कुमार परिवार और कपूर परिवार की ओर से मोहन जी रजनी और श्रीमती सरला कक्कड़ जी की ओर से बधाई का गीत वो छेड़छाड़ वाला वो नटखट सा गीत जो शादी ब्याह में बहुत सुहाना लगता है मन को भाने वाला गाना लगता है।

0: खबर आई, अच्छी खबर आई और भाई मुंह मीठा हो गया क्योंकि खबर थी या मिठाई। थैंक यू वेरी मच भाई फरमाइश करने वालों की भी और निशा और रोहन को एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। दैट वाज द सॉन्ग स्पेशली प्लेड फॉर देम।
1: फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: Aur ek suchna, Laika Radio Network is proud to team up with Bharatiya Vidya Bhavan for the Summer Showcase 2026 at Harrow School. Experience the richness of Indian classical arts and culture in an unforgettable celebration of music, dance and artistic excellence on Saturday, 8th of August from 3 p.m. onwards. Tickets available from ticketssource.com, bhavan/bhavan, ticketssource.com/bhavan. और कॉल 07421497541।
1: ये है लाइका गोल्ड।
3: दिस सुपर हिट ट्रैक इज ब्रॉट टू यू बाय टिल्डा बासमती राइस विद अ रेंज ऑफ ग्रेन्स एंड फ्लेवर्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। यू कैन मेक एवरी मील मेमोरेबल।
4: आवाज की दुनिया के दोस्तों, आप सुन रहे हैं मनोरंजन प्रोग्राम आपके अपने प्रेजेंटर रवि शर्मा के साथ।

0: अरे नहीं है तो जा अपने भाई को खिला, काय को कान खा रही है, नहीं है नहीं है, जिनको है उनको बोलने दे। साउथ ओल्ड ट्रेवल का संदेश बार बार याद दिला रहे हैं भाई, प्रोग्राम बना लीजिए। साउथ ओल्ड ट्रेवल इज प्लीज टू अनाउंस दैट द FCDO हैज लिफ्टेड इट्स एडवाइस अगेंस्ट ऑल बट एसेंशियल ट्रेवल टू दुबई। अब तो भाई ऑल ट्रेवल जो है वो खुली हैं और उन्होंने वो अपनी एडवाइस वापस ले लिया कि भाई जरूरी हो तभी आप यात्रा करें। कॉल साउथ ओल्ड ट्रेवल फॉर द मोस्ट कम्पिटेटिव दुबई डील्स ऑन 02085748410 एट ऑल प्रोटेक्टेड।
1: To you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels, or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive.
2: ये है
3: लाइका गोल्ड
0: ट्रेवल हब world.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन ट्रेवल हब world.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 02087828833 और विजिट ट्रेवल हब world.com।
4: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद Unbeatable price.
3: At all protected.
4: Visit travelhubworld.com.
5: किटी पार्टी हो या फैमिली का कोई भी ओकेजन हो या फिर बिजनेस रिलेटेड कोई भी गेट टुगेदर,
6: अब हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश एट विवेक हाउस गॉडफादर एंड को। स्वादिष्ट साउथ एशियन खाना, 5-course lunch सिर्फ £35, जबरदस्त एम्बियंस और कन्वीनियंट कार पार्किंग अवेलेबल एट हॉलिडे इन वॉटफोर्ड। तो देर किस बात की, बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 07300998823।
7: Location.
8: In real estate, location is everything. And this one is a villa.
7: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
8: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
7: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
8: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
7: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
8: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
7: High appreciation.
8: In Dubai.
9: Mom, I don't know what to do anymore. My hair is getting worse. I've tried everything. Nothing works.
10: Beta, you're not alone. For 5 generations, our family trusted one thing. Pure herbal care. Amla, Bringraj, Neem. Real ingredients, not chemicals.
9: So where do we find something like that now?
10: Right here in London. Baidyanath Sidhayu hair oil, shampoo and toothpaste. Pure Ayurvedic, premium and made the way our eldest used it.
11: From the house of Baidyanath, with over 100 years of Ayurvedic legacy. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK.

बहुत ही सुरीला गीत आ रहा है वरुण भाइयों, ध्यान से सुनिएगा। और ये गीत किसके नाम जा रहा है आपको बता दें कि भाई ये गीत हम जन्मदिन मनाने वालों के नाम कर देते हैं। आज जन्मदिन मना रहे हैं भाई भारत के जाने माने फुटबॉलर सुनील छत्री, 1984 में जन्मे थे। और एक और सुनील, सुनील ग्रोवर, अरे भाई वो क्या है डॉक्टर समथिंग समथिंग, जो कपिल शर्मा शो में आते हैं ना, अपने कभी कुछ डिग्री ना पीछे नाम के लगा लेते हैं कभी कोई, तो भाई सुनील ग्रोवर बड़े ज़बरदस्त आर्टिस्ट हैं, मैं कहता हूँ बहुत ही टैलेंटेड। तो उनका भी जन्म आज ही के दिन हुआ था और वो हरियाणवी है बता दूँ आपको। सुनील ग्रोवर 1977 में जन्मे थे, सिरसा ज़िले में, डबवाली है उनके शहर का नाम। मैथिली शरण गुप्त जाने माने कलाकार राइटर हैं, मैथिली शरण गुप्त जो हैं कवि लेखक, 1886 में जन्मे थे। मनीष पॉल ये भी एक भाई क्या कहें एंकर हैं, एक्टर हैं, 1981 में जन्मे थे। और मनमोहन वारिस पंजाब के जाने माने सिंगर, 1967 में जन्मे थे। संगीतकार जयदेव नैरोबी में जन्मे थे 1919 में। और भाई बड़े हिट गीत दिए उन्होंने, ये दिल और उनकी निगाहों के साए, जैसे सूरज की गर्मी से, ये गीत भी भाई बाली भाई बहुत सारी जानकारी जुटा के लाएंगे इनके बारे में। और एक और गीतकार जिनका नाम है शकील बदायूनी, क्या हिट गीत लिखे उन्होंने और बड़ी छोटी उम्र में वो दुनिया से चले गए, वरना भाई उनकी कलम बड़ी सशक्त थी। ऐसे ऐसे गीत लिखे संगीतकार रवि के साथ, नौशाद साहब के साथ और कितने ही संगीतकारों के साथ उन्होंने हिट गीत दिए। शकील बदायूनी। आज दुनिया में होते तो अपना जन्मदिन मना रहे होते शकील साहब।

भारत भूषण और मीना कुमारी पर पिक्चराइज भाई। झूले में पवन के छाई बहार आई बहार। बैजू बावरा था फिल्म का नाम।

0: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles. Just add hot water and enjoy Coca Noodles in 3 minutes.
1: शकील बदायूरी साहब का जन्मदिन है भाई, उनका लिखा गीत हमने सुनवाया बैजू बावरा फिल्म से, और याद दिला दूं कि बाली भाई बहुत सारी सामग्री उनके बारे में जुटा करके लेकर के आ रहे हैं, तो वो बहुत सारे गीत उनके सुनवाएंगे आज शकील बदायूनी जी के बारे में।
2: मनोरंजन विथ रवि शर्मा।
3: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: And if you decide to send money, well, let me tell you the rates for £1. They are giving in Indian currency 128.35 rupees. Pakistani 373.81 rupees. Sri Lankan rupee 451.94. Bangladeshi takas 166.22 and Afghani 88.194 £1.
4: Leica Radio.
3: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply. Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
1: The Gold. नोट कीजिए, द गोल्ड इज ट्रेडिंग एट द रेट ऑफ 96.78 पाउंड्स पर ग्राम।
3: गोल्ड रेस वाज स्पॉन्सर्ड बाय पूजा स्वीट्स, वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी वेजिटेरियन फूड सप्लायर्स। पूजा स्वीट्स.com और विजिटर्स एट ईस्टहैम, हाउंसलो और क्राउली।

0: ए पुलिस वालों, शायरी छोड़ो और कातिल की तलाश करो। किसने कत्ल किया है?
1: मुझको तो कातिल की इतनी

0: Laika Gold. This part of the show is brought to you by 108 Base Hospital Uri. Starts 15th of August every Saturday and Sunday at 7 PM on Colors TV.
1: I hope Major Naina, हम लोग वक्त पर पहुंचे।
2: श्रावण के पवित्र महीने में करें भगवान शिव की आराधना। परम पूज्य संत श्री चिन्मयानंद बापू जी के श्रीमुख से सुनिए श्री शिव महापुराण कथा 13 अगस्त से 19 अगस्त तक हिंदू सनातन मंदिर ईलिंग रोड वैमली में। समय दोपहर बाद 3 बजे से शाम 7 बजे तक। नित्य कथा और महाप्रसाद की पावन व्यवस्था का आनंद लें। शिव महापुराण का अपने पूर्वज माता पिता के नाम से मूल पाठ डेली यजमान और सेवा के लिए संपर्क करें 07930271930।
3: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home. Now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit Ambala.
4: खाखरा क्रंच, भाखरी मंच, चिक्की स्वीट, पापड़ बीट, पिकल्स हीट, ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक।
5: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स, खाखरा, नमकीन, पापड़, पिकल्स, चिक्की, पॉट मील्स एंड मच मोर।
4: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।

0: Now visit starters.co.uk or call 0208-900-2323.
1: Discover unique Grand Prix holidays with flights, race tickets and hand-picked stays. Combine iconic motorsport weekends with city breaks, beach escapes or even cruise experiences for the ultimate getaway. Prices start from just £799 per person. Visit skylordcruiseandholidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.
2: Packed for the trip? Gifts? Passport?
3: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
2: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
3: Simzy?
2: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
4: Plans for Asia, Europe and beyond. Search simzy.com. That's SIMZY.com. T's and C's apply.
5: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150-2025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply।
6: मनोरंजन विद रवि शर्मा।
7: और बहनों भाइयों, रवि शर्मा का पैगाम आपके नाम। क्या भाई, हम प्रेजेंटर लोग किसके प्रोग्राम किया और किसके हम उस मोड़ पर आ गए कि अब आपसे इजाजत लेना होगी। हमारी अगली मुलाकात कल 10 बजे की खबरों के बाद। बाली भाई का इंतजार कीजिए और मुझे अनुमति दीजिए। बाय।

0: in this particular hour, I would love it if you concentrated on the lyrics. Lyrics written by the great poet. A name that has given us such a variety of poetry and peppy songs, romantic songs. Ek zamana tha, shayar log jo the, wo log likha karte the about the downtrodden sections of society, usko kaise uplift karna chahiye, kiso kaise society ko behtar banana chahiye. Lekin Shakil Badayuni ne ye poetry ko kuch aur hi rukh diya aur rukh pura badal diya. Unhone romance dala unki poetry mein, aisa romance dala ke aaj hum jab sunte hain inke gaane, dil laga kar hum ye samjhe zindagi kya cheez hai. मैंने ए जाने वफा तुमसे मोहब्बत की है, जिंदगी में प्यार करना सीख ले, जिसको जीना है मरना सीख ले. मतलब गायकी ऐसी के खूबसूरत गाने इन्होंने ऐसे ऐसे लिखे जिसमें रोमांस था और फिलॉसफी भी थी. कुछ गाने जैसे कि मधुबन में राधिका नाचे रे, वैसे भी चौदहवीं का चांद अवार्ड जीता इन्होंने. जी हाँ, तीन गानों में इन्होंने ऐसा अवार्ड जीता, आज तक हम ये गाने सुनते हैं तो दिल खुश हो जाता है. जी हाँ, 1960 का चौदहवीं का चांद फिल्म का, फिल्म घराना में हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं. और फिर 20 साल बाद हेमंत कुमार जी के साथ उन्होंने वो गाना लिखा, कहीं दीप जले कहीं दिल. इन सब में इन्होंने अवार्ड्स जीते. चलो इनके बारे में हम कुछ बात करते हैं. ऑफ कोर्स रवि शर्मा जी ने तो कुछ कुछ आपको बता दिया होगा. मैं तो सैल्यूट करता हूं मोहम्मद जमाल अहमद सोख्ता कादिरी को, उनके पिताजी को. मैं उनको सैल्यूट करता हूं क्योंकि उन्होंने, उनके पास एक विजन था उनके बेटे के लिए, शकील मसूदी रियल नेम. उन्होंने अरेंज की थी ट्यूशंस घर पे, अरेबिक, उर्दू, पर्शियन, हिंदी, इन सब जबानों की ट्यूशन इन्होंने घर पे रखी थी. माहौल भी कुछ ऐसा था घर का, पोएट्री का मौसम था और माहौल भी था, क्योंकि हिज विजन वॉज 100% राइट इनके पिताजी का. Because Shakil became Geetkare Azam. Geetkare Azam Shakil Badayuni. Kyunki Badayun mein janme the, isliye unka naam Badayuni inhone rakha, Shakil Badayuni. Now two people who had a good influence on Shakil in his quest for becoming a poet and lyricist. Ek the Ziaul-Qadiri Badayuni. इनके एक डिस्टेंट रिलेटिव थे एंड अ रिलीजियस शायर, उनका बड़ा असर था इन पे और इन्होंने काफी इन्फ्लुएंस डाला शकील पे. और दूसरे थे हकीम अब्दुल वहीद अश्क बिजनोरी. जब वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में थे तब इन्होंने काफी उर्दू पोएट्री इनसे सीखी. 20 साल की उम्र 1936 में शकील जॉइंड अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और मुशायरों में शरीक हो गए और उन्होंने इतनी बार मुशायरे जीते. 24 साल की उम्र में, सोचो 20 साल का नौजवान ऐसी पोएट्री और ऐसे मुशायरे करते थे और अवार्ड्स जीतते थे. और 24 साल की उम्र में 1940 में उन्होंने शादी कर ली सलमा से, a distant relative who lived in the same house, लेकिन वो पर्दा वाला जो सिस्टम होता है इसलिए वो लोग they were not very close because अलग अलग पन होता है आदमी और औरतों का, लेकिन उसी घर में रहती थी and they got married and इन्होंने BA complete किया और फिर दिल्ली चले गए. दिल्ली जाके सप्लाई ऑफिसर बन गए, डिन स्टॉप पार्टिसिपेटिंग इन मुशायराज एंड ही हैड अर्नड अ फेम नेशन वाइड मुशायरों से। अभी तक तो गाने भी नहीं हुए ना तो बॉम्बे पहुंचे थे। 28 साल की उम्र में 1940 में he moved to the dreamland Bombay to fulfill his dreams of writing songs for films. जी हाँ, और प्रोड्यूसर थे A.R. करदार, अब्दुल रशीद करदार जो प्रोड्यूसर थे, और कंपोजर नौशाद साहब। इन्होंने उनको इनका इंटरव्यू लिया और कहा कि कुछ पोएटिक स्किल दिखाओ आप एक लाइन लिखकर। और उन्होंने क्या लिखा, उन्होंने लिखा जैसे मैंने पहले भी बयां किया, हमदर्द का अफसाना दुनिया को सुना देंगे, हमदर्द का अफसाना दुनिया को सुना देंगे, हर दिल में मोहब्बत की एक आग लगा देंगे। और इनको इमीडिएटली एक फिल्म मिल गई, दर्द, 1947 की फिल्म, और उसमें एक गाना जो था वो बड़ा मशहूर हुआ, आज की तारीख में भी हम सुनते हैं तो मजा आता है। अब इन्होंने कितनी फिल्में की, he did I think 89 films, उर्दू, अरबिक, पर्शियन, हिंदी सीखी हुई, और इतनी वैरायटी पोएट्री में। सब म्यूजिक डायरेक्टरों के साथ इनकी बड़ी बनती थी, जैसे कि नौशाद साहब, हेमंत कुमार, और हमारे रोशन साहब एंड मैनी अदर्स। लेकिन इन्होंने आखिर में, इस आवर के आखिर में मैं आपको शकील ने क्या कहा था वो मैं आपको सुनाऊंगा। इट इज द 110th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ शकील बदायूनी। लेट्स लिसन टू सम ऑफ हिज जेम्स।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Your £1 in British sterling can get you up to 127.85 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch online or SBI Yono mobile app. TNCs apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Gem in Gold Afternoons with Bali Brambert. Bali Brambert. Gem in Foods. Bilkul ghar jaisa swad aur ghar jaisi hi baat. Available at Asian stores near you.
3: This part of the show is brought to you by 108 Base Hospital Uri. Starts 15th of August every Saturday and Sunday at 7 PM on Colors TV.
4: I hope Major Naina, hum log waqt par pahunche.
5: Two businesses.
6: Same town.
5: Same service.
6: One appears on page one of Google.
5: The other doesn't.
6: Guess which one gets the customer?
5: The truth is brutal.
6: The first page of Google gets the business.
5: Everyone else gets what's left.
6: So here's the real question.
5: When your customers search for what you sell, do they find you?
6: Visit HeartyHanks.com and stop letting Google choose your competitors.
5: Hearty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.

0: और फिर शकील बदायूनी और नौशाद की जोड़ी बड़ी डिमांड में रही। दीदार, बैजू बावरा, मदर इंडिया, मुगले आजम, दुलारी, शबाब, गंगा जमुना, मेरे महबूब, यू सईद एंड दे रोट एंड ही डिड द म्यूजिक। नौशाद एंड शकील बदायूनी।
1: फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
1: Leica Radio Network, broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands with the UK's biggest Asian hits. Wake up to Kajal on breakfast at 6 a.m. and drive back with Sandy Shah at 4 p.m. Like a gold.
0: और ये गीत सी रामचंद्र जी ने कंपोज किया, आशा भोसले जी ने गाया। फिल्म है जिंदगी और मौत, यही गाना महेंद्र कपूर जी ने भी गाया था, पर आप आशा भोसले का वर्जन सुनिए। लिखा किसने? शकील बदायूनी।

0: से निराला।
1: मैम्स्टर पानी पूरी और पानी पूरी का पानी।
2: All Mamster products are nut free and made in Canada. Now available at your nearest Asian grocery store.
3: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय।
4: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस।
3: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस।
4: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम।
3: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस।
4: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com। लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
5: साउथ हॉल देसी स्वाद का असली अड्डा आ गया है।
6: बीकानेर वाला परंपरा भी, स्वाद भी।
7: बीकानेर वाला में मिलेंगे फेमस छोले भटूरे, टेस्टी स्नैक्स, मिठाई और फैमिली के साथ यादगार मोमेंट्स। आइए 60 किंग स्ट्रीट साउथ हॉल, UB2 4DB। कॉल 07795181001।
8: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
9: Look, there's a snail, and its eyes are sticking out of its tentacles. It looks like an ice cream.
10: Ella sees a lot more than just a snail. With free kids' glasses from Specsavers, plus a second pair from £10, they'll see a world of wonders. And you'll see a great deal too. So book them an appointment at Specsavers today for free. £10 second pair with free glasses from our £65 and above range.
9: Conditions apply. See online for details.
11: Sounding better than ever in the sunshine. This is Leica Gold.

0: now visit starters.co.uk or call 0208-900-2323.
1: Creative Team Events and Peace Nation UK brings to you the King of Sufi Music, Lakhvinder Vidali, to London and Birmingham. This October, for sponsorship inquiries, call 07959-250-376.
2: Location, location, location.
3: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
2: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
3: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
2: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
3: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
2: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
3: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Daniel. Prime location.
2: High appreciation.
3: In Dubai.
4: Dad.
5: What's wrong, beta?
4: The Indian rupee has skyrocketed and it's the best time to send money to Dadi in India.
5: I will run down to the money exchange now.
4: No, Dad. You can do it from your sofa. Download the Yono SBI UK mobile app and you'll get a fast service right from your phone.
5: Oi, bale bale. I'm going to tell all my friends to download the Yono SBI UK mobile app and take advantage of their competitive rates.
4: SBI UK regulated by the FCA and PRA.
6: London walo, dhyan se sun lo. Ke furniture ki dhamakedar फ्लैश सेल आ गई है। शानदार इटालियन और जर्मन डिजाइन वाले बेडरूम और डाइनिंग फर्नीचर पर भारी छूट का फायदा उठाइए। गद्दों और अलमारियों पर जबरदस्त कटौती, सभी दीवान सेट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त हेडबोर्ड, सभी सामान तत्काल डिलीवरी के लिए दस्तयाब हैं। जल्दी कीजिए, ये फ्लैश सेल सोमवार शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी। आज ही हमारे हैरो, पिकलवुड और स्लॉगो के शोरूम्स में आइए या फिर keyfurniture.co.uk पर जाएं। वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फौरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागसन।
7: Discover Turkey with a beach and touring escape. Fly from the UK, enjoy 7 nights all-inclusive beach stay, then experience a 3-day escorted tour in Cappadocia. Prices lead in from just £1,199 per person. For Turkey holidays with a difference, visit Skylord Cruise and holidays.com or call 019-238-83100. Atoll protected.
8: 40 million people listen to commercial radio each week. That's 80 million ears, give or take. Amplify your advertising at radiocentre.org.
0: Across London, this is Bally Brambat on Like a Gold.

0: क्या लिरिक्स, फिल्म है नर्तकी 1963। वी आर लिस्निंग टू रफी साहब सिंगिंग टू द लिरिक्स ऑफ शकील बदायूनी।
1: Leica Radio Network, broadcasting across Greater London.
0: And one of the greatest hits of Shakil Badayuni.

We always remember these songs and remember Lata Mangeshkar ji, Hemant Kumar, 20 saal baad. Hamare artist of the week, Biswajit. We remember all these people, lekin we don't remember Shakil Badayuni jinhone gana likha. मुगले आजम के सब गाने हम सुनते हैं लेकिन ये गाने को हम इग्नोर करते हैं. पिछली बार ये गाना सुनाई दिया था लाइका गोल्ड पे 2022 में, चार साल पहले. सुनिएगा.

0: कैसे कैसे खूबसूरत गाने आज सुनाई दे रहे हैं। अ ब्यूटिफुल कंपोजर जयदेव वर्मा। अब सोचा जाए तो देखो, आज बर्थ एनिवर्सरी है शकील बादायूनी जी की और बर्थ एनिवर्सरी है जयदेव जी की। 110th बर्थ एनिवर्सरी शकील बदायूनी और 107th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ जयदेव जी, लेकिन दोनों ने साथ में कभी काम नहीं किया था। एंड अनफॉर्चुनेटली दैट्स व्हाट हैपन्स समटाइम्स इन द इंडस्ट्री। व्हेन जयदेव जी को थोड़ा सा साइड में हटा दिया था लोगों ने, क्यों क्या, चलो बात करते हैं हम। जयदेव वर्मा बॉर्न ऑन 3rd of August 1918 इन नैरोबी एंड 6th January 1987 में मुंबई में उनका इंतकाल हुआ एट द एज ऑफ 68। वो एक्टिव थे 1933 से 1987 तक, 1933 से, जी हाँ, और 1918 में जन्मे थे नैरोबी में, और 1933 से 1987, 54 years इन्होंने इतना काम किया इंडस्ट्री के लिए। एंड ही डिड 49 फिल्म्स। हम तो सिर्फ कितने 10-15 गाने सुनकर सोचते हैं कि बस इन्होंने इतना ही काम किया, लेकिन ही हैड डन 49 फिल्म्स एंड ही वन 3 नेशनल अवार्ड्स दैट प्रूव्ड हिज टैलेंट। रेशमा और शेरा 1972, गमन 1979, अनकही 1985। एंड आई वुड से ही वॉज ब्रॉट अप इन लुधियाना। मैंने कहा ना कि नैरोबी में वो जन्मे थे, लेकिन ही वॉज ब्रॉट अप इन लुधियाना, इनिशिएटेड इन टू म्यूजिक बाई प्रोफेसर बरकत राय। और 1933 में 15 साल की उम्र में, जैसे मैंने कहा कि संगीत के बड़े शौकीन थे और एक्टिंग का भी बड़ा शौक था, ही रैन अवे टू बॉम्बे टू एक्ट इन फिल्म्स 15 साल की उम्र में। एंड ही डिड 8 फिल्म्स एज अ चाइल्ड स्टार फॉर वाडिया फिल्म कंपनी। उनमें से कुछ फिल्में मुझे याद है, कीमत, फिर थी हंटर वाली, फ्रंटियर मेल, ऐसी कोई फिल्में थी। इन बॉम्बे ही लर्न्ड म्यूजिक फ्रॉम कृष्णा राव जावकर और जनार्दन जावकर, इन दोनों से उन्होंने म्यूजिक सीखा। एंड देखा जाए तो बैड लक हुआ। बैड लक क्यों हुआ, क्योंकि जब इन्होंने 8 फिल्में चाइल्ड आर्टिस्ट और फिर इन्होंने म्यूजिक भी सीखा कृष्णा राव जावकर और जनार्दन जावकर से, और फिर ड्यू टू हिज फादर्स ब्लाइंडनेस ही रिटर्न टू लुधियाना। हिज फादर पास्ड अवे, ही टुक अप रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हिज फैमिली। ही गॉट हिज सिस्टर वेद कुमारी मैरिड टू सतपाल वर्मा। 1943 में उम्र थी 25 साल की। ही वेंट टू लखनऊ टू लर्न म्यूजिक फ्रॉम उस्ताद अली अकबर खां, हू मेड हिम हिज असिस्टेंट। जी हाँ, बहुत टैलेंटेड थे और उस्ताद अली अकबर खां को बहुत पसंद थे वो। और 1951 में फिल्म आंधियाँ, हम सफ़र, देवर ऑल कुछ नवकेतन फिल्म्स भी थी। हाउस नंबर 44, काला पानी, ये सब फिल्म्स थी। और टैक्सी ड्राइवर, जिसमें वो SD बर्मन के असिस्टेंट बने, जी हाँ, और वहाँ से इन्होंने काफ़ी सीखा। उन्होंने कोई गाने अपने आप कंपोज करके उन्होंने दिए तो नहीं थे, लेकिन ही वॉज क्लासिकली सो टैलेंटेड एंड SD बर्मन रियली अप्रिशिएटेड हिम एज एन असिस्टेंट एंड ही डिपेंडेड ऑन हिम फॉर क्वाइट अ फ्यू कंपोजिशंस। लेकिन कंपोज तो SD बर्मन ही करते थे, लेकिन ये बड़ा सपोर्ट देते थे। द बिग ब्रेक केम व्हेन ही गॉट म्यूजिक फॉर चेतन आनंद की फिल्म थी जोरू का भाई एंड अंजलि। दे वर पॉपुलर फिल्म्स, बट नवकेतन जो बैनर था देवानंद साहब का, हम दोनों फिल्म 1961 में, उम्र थी, ही वॉज ओवर 40 नाउ, ही वॉज 43 ईयर्स ओल्ड। लेकिन कहते हैं ना, लाइफ बिगिंस एट 40। एट द एज ऑफ 43 इन्होंने ऐसा म्यूजिक कंपोज किया एंड दैट डिड द ट्रिक। अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, अभी ना जाओ छोड़कर। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया। ऐसे ऐसे गाने इन्होंने कंपोज किए एंड वो इंडस्ट्री की नज़र में आए। देन सुनील दत्त मुझे जीने दो, तब उम्र थी 45 की, 1963 की फिल्म। देन क्वाइट अ फ्यू फिल्म्स फ्लॉप्ड अंटिल गमन। गमन में नेशनल अवार्ड मिला इनको। ही वॉज अ स्काउट, ही वॉज स्काउटिंग फॉर न्यू वॉइसिस, रॉ वॉइसिस। ही डिडंट केयर के इंडस्ट्री में कौन पॉपुलर सिंगर है। He appreciated any new voice that came along as long as he liked it. Suresh Vadkar, Hariharan, his protege, Chhaya Ganguly in Gaman. In sabko inhone ek nayi life di. Ji haan. His forte was mixing traditional and folk music into film situations. Jaise ke वो दिलीप कुमार सुनील दत्त जी की जो फिल्म थी मुझे जीने दो, और एक दूसरी फिल्म भी थी, अब भी मुझे याद आएगी, मैं अब भी बताऊंगा आपको। और वो फिल्म के अंदर इन्होंने ऐसा म्यूज़िक दिया था, उन्होंने मांड जो राजस्थानी राग होते हैं, सेमी क्लासिकल सॉन्ग्स होते हैं, उनको पकड़ कर इन्होंने कंपोज भी किए गाने। It was absolutely amazing the way he composed songs. And wo gana tha abhi na jao chhodkar. He took the raag Dadra, which is like a waltz, you know. Aur kaise kaise beautiful compositions inhone kiye. And not only that, non-filmy gaano mein ek geet main aapko sunaunga, Hari Varsh Rai Bachchan. That's अमिताभ बच्चन जी के पिताजी, उनके क्लासिकल वर्क्स मधुशाला का म्यूज़िक इन्होंने सेट किया था, वोकल्स बरवाए मन्ना डे। एंड लता जी थर्ड फेवरेट आफ्टर मदन मोहन, सलील चौधरी, लता जी को जयदेव जी की कॉम्पोजिशंस बहुत पसंद आती थी। एंड सज्जाद हुसैन, उनकी भी कॉम्पोजिशंस। सो मदन मोहन, सलील दा, जयदेव, सज्जाद हुसैन, इन सब की कॉम्पोजिशंस लता जी के फेवरेट थे ये सब। ही नेवर गॉट मैरिड, ही वॉज क्लोज टू हिज सिस्टर्स फैमिली इन द यूके, एंड ही पास्ड अवे ऑन 6th of January 1987 एट द एज ऑफ 68। 49 फिल्म्स, एन असिस्टेंट ऑफ एस डी बर्मन, जयदेव।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Your £1 in British sterling can get you up to 127.85. 127.85 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch, online or SBI Yono mobile app. TNCs apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Gold Afternoons. Proudly sponsored by Jemin Foods, the authentic taste of India. Dal bhat, pav bhaji, biryani. Bas pet sambhar jo, kyunki cravings badhne wali hai.
3: This part of the show is brought to you by 108 Base Hospital Uri. Starts 15th of August every Saturday and Sunday at 7 PM on Colors TV.
4: I hope Major Naina, hum log waqt par pahunche.
5: 07300998823. नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेजन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को। सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग, और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे। विवेक हाउस वॉटफर्ड, बुक ऑन व्हाट्सएप 07300998823।
6: सेलिब्रेट दिवाली एट द आइकॉनिक रॉयल अल्बर्ट हॉल।
7: जॉइन लेजेंडरी सिंगर कविता कृष्णा मूर्ति
6: लाइव ऑन संडे द 1st of November। An unforgettable evening of spectacular Bollywood and devotional songs
7: with the Royal Philharmonic Concert Orchestra.
6: Get your tickets from royalalberthall.com and sanathanevents.org. Brought to you by Sanathan Events.
7: Exclusive radio partner, Laika Radio Network.
8: Ilford, अब असली इंडियन फ्लेवर्स का मजा लीजिए.
9: परंपरा भी
10: फेमस छोले भटूरे, राज कचौरी, मिठाई और बहुत कुछ आपका इंतजार कर रहा है. मिलते हैं 513-519 क्रैनब्रुक रोड, गैंसिल, इल्फोर्ड, IG26HA. कॉल 07555-506015.
11: Dad,
12: what's wrong, beta?
11: The Indian rupee has skyrocketed, and it's the best time to send money to daddy in India.
12: I will run down to the money exchange now.
11: No, Dad, you can do it from your sofa. Download the Yono SBI UK mobile app, and you'll get a fast service right from your phone.
12: Oi, bale bale! I'm gonna tell all my friends to download the Yono SBI UK mobile app and take advantage of their competitive rates.
11: SBI UK regulated by the FCA and PRA.
13: You know that clean, fresh feeling after brushing? Siddhayu toothpaste takes it to another level. Clove, neem, herbal actives, proper Ayurvedic care, but modern and premium. Fresh breath, healthy gums, no harsh chemicals. From the house of Baidyanath, with over 100 years of Ayurvedic legacy. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK. Siddhayu, Ayurved that fits your life.
14: Discover Malta and Gozo with a twin center island escape. Fly from a choice of UK airports year-round and enjoy 3 nights in Malta, a ferry trip to Gozo for another 3 nights and more. Prices start from just £399 per person. For great deals on cruise and holidays, visit Skylord Cruise and holidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.
15: Ek aitihasik ane divya avsar. Paris ma bhavya BAPS Swaminarayan Mandir na grand opening ma darshan no labh. Aap pavitra yatra ma jodao. આપના પરિવાર સાથે જ્યાં મળશે શાંતિ, ભક્તિ અને આનંદ, અને સાથે આઈફિલ ટાવર, સેન રિવર ક્રુઝ અને પેરિસ સિટી ટૂર નો આનંદ માણો. ડિપાર્ચર 5 સપ્ટેમ્બર ના મંત્રા હોલિડેઝ. કોલ કરો 02033-773-633. મંત્રા હોલિડેઝ, વોટ્સ યોર ટ્રાવેલ મંત્રા?
16: Attention, the ITEC Desi Independence Food Festival and Trade Week is on from the 3rd to the 9th of August at ITEC Cash and Carry Southall, with unbeatable wholesale deals on rice, dairy, frozen foods, fresh produce, catering, essentials and much more. Don't miss live tastings on the 5th and 6th of August, plus exclusive offers all week. Visit Unit 123 South Bridge Way, Southall, UB2 4AX, or call 0203-393-5225. ITEC Wholesale, open 24/7, everything your business needs, all under one roof.
17: Laika Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and LaikaGold.com.
0: Gusakhi Maaf, aap sun rahe hain tribute from Laika Gold for Jaidev Verma. Ek film jo thi Sunil Dutt ji ki, Reshma aur Shera, जो मैं याद कर रहा था और याद आ गया मुझे, उसमें आशा जी को उन्होंने एक गीत गवाया था एंड दैट वाज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक. जैसे इन्होंने शुरुआत कराई थी आशा जी को, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि कैसे वो उनको गवाते थे विद हैवी ब्रीदिंग.

0: ऐसी स्टाइल से वो कंपोज करते थे. एंड लता जी यूज टू लव सम ऑफ हिज कंपोजिशंस एंड शी आल्सो डिड इन द सेम फिल्म वही अंदाज का गाना.
1: मीठी सी चुभन, एक ठंडी सी अगन,

0: से निराला। मैम्स्टर पानीपुरी और पानीपुरी का पानी।
1: All Mamster products are nut free and made in Canada. Now available at quality food branches.
2: From breathtaking wedding jewelry to the finest diamond rings, do come in and see us at Minar Jewelers to create the perfect symbol of your love story. Minar Jewelers, the diamond specialists. Call 020-8767-2142.
3: ये बवाल बॉस के ऊपर जाएगा भाई।
4: पवन जी, मैंने सुना है आप दोनों के रिलेशंस अच्छे नहीं है।
5: आप सीधे सीधे आरोप लगा रही हो
6: भाई, निकाल माइक।
7: बाई बाई के पिया।
1: The brand new reality TV show Bhojpuri Bawal, Monday to Sunday at 10 PM on Colors TV.
8: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
9: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: क्या गाना है ना, कंपोज बाय जयदेव जी. मैं सैटरडे को लेस्टर गया था एंड वीरू वकानीज म्यूजिशियंस वर देयर, वीरू एंड गीतर्स, एंड दे वर फैंटास्टिक. दिलीप जी वाज ऑन द सिंथ एंड ही इज गोइंग बैक टू इंडिया. बॉम वोयाज टू हिम, ऑल द बेस्ट. एंड हिज वाइफ शी वाज सिंगिंग एंड देवाशीष दास गुप्ता, द किंग ऑफ द वॉइस ऑफ रफी, द ग्रेट नेम. He sang all Rafi songs like these. And a big hello to Hitesh.
1: Feel Good Track, brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
1: On this week's Leica Extra podcast, Kush and Deep Raja discuss honour-based abuse.
3: When people are going to get help, those additional perpetrators aren't necessarily being recognised. The primary perpetrator, the husband, was captured, but, you know, the rest of the key players behind the scenes weren't recognised. And we need to kind of be talking about this more so the professionals can catch, you know, all of the perpetrators of this abuse that carry it out.
1: Leica Extra is here. Search for our podcast, Leica Extra, on all major streaming platforms. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: Each currency equivalent to one sterling pound. US dollars 1.3456. Indian rupees 128.21. Pakistani rupees 373.58. Afghanis 88.15 and Mauritian rupees 63.14, Kenyan shillings 174.17.
4: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
4: Leica Gold.
1: Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com. Or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: Gold is currently trading at £96.29 per gram.
1: Gold Race was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com. Or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
5: Gold Afternoons with Bali Brahmbhatt. Bali Brahmbhatt is sponsored by Jemin Foods. Tamara Tea Time no asli hero. Dal bhat, pav bhaji, biryani, namkeen, khakra, chikki, potato chip, mango pal, pani puri, so many varieties for everyone. Marshe Tamara Najikna Asian Shops ma.
6: This part of the show is brought to you by 108 Base Hospital Uri. Starts 15th of August every Saturday and Sunday at 7 PM on Colors TV.
7: I hope Major Naina, hum log waqt par pahunche.
8: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए. दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम. साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे. तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग. कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 0208574-8410. दैट्स 0208574-8410.
9: साउथ हॉल ट्रेवल. ऑटो प्रोटेक्टेड.
10: श्रावण के पवित्र महीने में करें भगवान शिव की आराधना. परम पूज्य संत श्री चिन्मयानंद बापू जी के श्रीमुख से सुनिए श्री शिव महापुराण कथा. 13 अगस्त से 19 अगस्त तक हिंदू सनातन मंदिर ईलिंग रोड वैमली में. समय दोपहर बाद 3 बजे से शाम 7 बजे तक. नित्य कथा और महाप्रसाद की पावन व्यवस्था का आनंद लें. शिव महापुराण का अपने पूर्वज माता पिता के नाम से मूल पाठ, डेली यजमान और सेवा के लिए संपर्क करें 07930271934. लंदन वालों ध्यान से सुन लो कि फर्नीचर की धमाकेदार फ्लैश सेल आ गई है। शानदार इटालियन और जर्मन डिजाइन वाले बेडरूम और डाइनिंग फर्नीचर पर भारी छूट का फायदा उठाइए। गद्दों और अलमारियों पर जबरदस्त कटौती, सभी दीवान सेट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त हेडबोर्ड, सभी सामान तत्काल डिलीवरी के लिए दस्तयाब है। जल्दी कीजिए, ये फ्लैश सेल सोमवार शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी। आज ही हमारे हैरो पिकलवुड और स्लॉगो के शोरूम्स में आइए या फिर keyfurniture.co.uk पर जाएं।

0: Now visit starters.co.uk or call 0208-900-2323.
1: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home. Now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai, and elaichi chai, just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
2: Location, location, location.
3: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
2: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
3: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
2: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
3: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
2: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
3: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube, prime location,
2: high appreciation
3: in Dubai.
4: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150-2025 और विजिट meraboiler.com। टीज एंड सीज अप्लाई।
5: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क है ना।
6: वेल शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स, क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स।
5: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ।
7: अपने बिजनेस को यूके के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें लाइक आवर रेडियो सेल्स ऑन 0207-132-1458 या ईमेल करें sales@laikamedia.co.uk।
8: Across London, this is Ballybrambat on Laika Gold.
7: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: track of the hour sponsor by Coca Noodles. More flavors, more convenience, more yum. Grab your Coca Bowl today.
1: जयदेव के कॉम्पोजिशंस, जयदेव घरौंदा का गाना आपने सुना, भूपिंदर सिंह, ये है यसुदास जी।
2: कोई गाता मैं सो जाता, कोई गाता मैं सो जाता।
1: लिखा है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। जी हाँ, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी ने ये लिखा है। जयदेव जी ने कंपोज किया है फिल्म, अब पता नहीं फिल्म थी

0: कितना प्यारा गाया यशुदास जी ने, लेकिन कंपोज किया किसने? जयदेव जी ने. वी डोंट अप्रिशिएट समटाइम्स हु कंपोज्ड इट, बट आई एम हियर टू रिमाइंड यू ऑफ दैट. एंड अ बिग वेलकम टू पंडित दिनेश, जिन्होंने कहा जलेबी जैसे कंपोजिशंस थी इनकी.
1: This is the number one Asian commercial group in London, consisting of Leica Radio and Leica Gold.
0: Yes, Pandit Dinesh was talking to me last night, and he knew Jaydev Ji very well. And he said, Jalebi jaisi compositions thi inki. How beautifully put. And welcome to UK, Pandit Dinesh.

जी हाँ, राग यमन में द डेब्यू ऑफ सुरेश वाडकर विद दिस पर्टिकुलर सॉन्ग एंड द फोक इनोवेटर एंड डिस्कवरर ऑफ टैलेंट. ही पोजेस्ड अ यूनिक गिफ्ट फॉर स्काउटिंग रॉ वॉइसेस. इसलिए इनकी कॉम्पोजिशन गोल गोल घूमती

0: across London. This is Bally Brambat on Like a Gold.
1: Congratulations to Vasan Bhakta, Mr. B, who did a wonderful job, a sold-out show of Debashish Das Gupta. ये गीत है दिल है कि मानता नहीं का, अनुराधा पौडवाल और देबाशीष दास गुप्ता ने गाया. और देबाशीष दास गुप्ता को कॉन्ग्रेचुलेशंस, ही इज स्टिल द किंग ऑफ द वॉइस ऑफ रफ़ी. एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू वीरू वखानी एंड गीता फौदे, ऑर्केस्ट्रा दे प्रोवाइडेड, एंड रेखा एज वेल.

0: यस, आपने जो आवाज सुनी देवर द वॉइसिस ऑफ अनुराधा पौडवाल एंड द सिंगर हिमसेल्फ देवाशीष दास गुप्ता, जिन्होंने हंगामा मचा दिया और लेस्टर में जो शो हुआ विच वॉज अ सोल्ड आउट शो, तो उसके बारे में देवाशीष दास गुप्ता जिनकी आवाज़ अभी आपने सुनी, उन्होंने रफ़ी साहब की ट्रिब्यूट की एंड ही सैंग इज हार्ट आउट एंड मुझे मैं आई हैड गॉन विद माई वाइफ शीला एंड And she was crying in the first song only when she heard his voice because बहुत सालों से हमारा मतलब relationship है इनके साथ, देवाशीष के साथ. I've done America में shows किए हैं, सब जगह हमने shows भी साथ में किए हुए हैं. So he's like a brother to me. And when I heard his voice singing O Duniya Ke Rakhwale और Rafi साहब के मेरे favorite गीत जो गाए, तो मैं तीन बार तो मैं रो पड़ा था during the show. And the audience was, oh my God, what an audience. And thanks to Vasant Bhaktaji, Mr. B, who made the show happen. Let's have Debashish Ji on air. Hello, Debashish.
1: Hello. How are you?
0: Welcome to Laika Gold. Aapka show bada khubsurat raha aur successful raha.
1: थैंक यू. आप लोग अगर ऑडियंस अगर अच्छी नहीं होगी तो मैं क्या कर सकता हूँ. ये पूरा क्रेडिट जाता है ऑडियंस को कि लेस्टर की ऑडियंस इतनी प्यारी है. 94 से मैं आ रहा हूँ यहाँ पर मिस्टर बी वसंत भक्ता जी के साथ
0: जी.
1: सो ऑलवेज आई गॉट दिस, ये जो प्यार मुझे मिला है. बट ये जो अभी लास्ट फर्स्ट था ना अपना शो, तो ये मेरे लिए लाइफ का यादगार शो रहेगा मेरे लिए
0: जी.
1: कि इतने प्यार से सुन रहे थे
0: जी.
1: इवन आई ऑल्सो, मैं भी कभी कभी इमोशनल हो रहा था
0: जी. हाँ, हो रहे थे आप, नो डाउट अबाउट इट. एंड खूबसूरती क्या थी कि आपने 1994 में जब आप आए थे और 65 डेज में आपने 47 शोज किए थे यूके में, करेक्ट?
1: यस. That's a big record. कि 60 days में 47 shows बहुत होता है.
0: और लाइका की तरफ से आपको एक मैसेज है कि नेक्स्ट टूर में we will get full backing from लाइका, लाइका रेडियो नेटवर्क, and आपका स्वागत होगा लंदन में भी और सब जगह आप शोज करेंगे, तो लाइका will definitely be there with you.
1: Lots of thanks. Already Mr. B with me, opportunity ऐसा था कि अचानक आपने फोन किया और Mr. B also with me here.
0: So nice.
1: उन्होंने अभी उन्होंने फाइनल किया, बोले next July you are coming back again.
0: Fantastic.
1: Yeah.
0: अभी इस यहाँ से आप कहाँ जा रहे हो?
1: मैं यहाँ से जाऊंगा, अभी हॉलैंड जाऊंगा. ऑब्वियसली फर्स्ट आई एम गोइंग टू बैक बॉम्बे एंड देन 6 सितंबर इज हॉलैंड में शो है मेरा. सो ऑब्वियसली मैं यहाँ से जाकर आई थिंक 4th अगस्त आई एम कमिंग टू हॉलैंड अगेन.
0: एंड दुनिया में यूके के बाद आपका बेस्ट ऑडियंस इज साउथ अफ्रीका ना? आप जा रहे हो ना वहाँ?
1: हाँ, मैं साउथ अफ्रीका जाऊंगा. वो मैं जनवरी में जाऊंगा एक्चुअली साउथ अफ्रीका में.
0: Fantastic.
1: और बेस्ट ऑडियंस मैं कहूंगा आपको कि रफी साहब को चाहने वाले मतलब तो ऑल ओवर वर्ल्ड में हैं.
0: हाँ जी.
1: बट साउथ अफ्रीका एक ऐसी जगह है, शायद ही कोई ऐसा आर्टिस्ट होगा जो रफी साहब के गाने अगर वहाँ कोई गा दे तो उन लोग बस आंख बंद करके रफी साहब के बारे में ही सोचते हैं. तो मुझे बहुत अच्छा स्कोप मिला है. दैट्स व्हाई माय वाइफ आल्सो फ्रॉम साउथ अफ्रीका डर्बन. मैं इतना ज्यादा शो करता था एक जमाने में.
0: हाँ जी.
1: साउथ अफ्रीका में. सो आई एम गोइंग अगेन
0: अभी. यू नो कल इसका रिपोर्ट जो आया and I was talking to Mr. B as well ke Debashish Das Gupta is still the king of the voice of Rafi. That was the report of yesterday's show.
1: वो तो देखो किंग एक ही आदमी है, दैट इज रफी साहब. हम तो फॉलोअर्स हैं. और
0: हाँ, बट द वॉइस ऑफ रफी, यू आर स्टिल द किंग ऑफ वॉइस ऑफ रफी. एंड मिस्टर बी, व्हाट्स योर फीलिंग्स, व्हाट्स योर फीलिंग्स अबाउट यस्टरडे शो?
1: या ही इज हियर, वन मिनट.
2: Good afternoon, Bali. How are you?
0: I'm fine. Congratulations for your success. And we have a message.
2: Thank you.
0: Ji.
2: I'm thankful to you and Sheila Bhabhi. You made a grace and time to come and attend the show.
0: Thank you.
2: And I've been in this business for 3 decades. And obviously, for me, and the compliments I got from the Leicester audience,
0: yes,
2: right, is phenomenal. That's why I was talking to Devashish that next July, let's plan. And hopefully, as you said, like I will support, we do nationwide shows.
0: Yes, we will definitely do that. And that is the reason why I called, to say congratulations. Right. And like I will definitely back you up. And I was talking to Raj Baddhanji, hamare CEO, hai na? Raj Baddhan, hamare CEO, unhone bhi kaha.
2: Ali, I've known you since late 80s.
0: Jee.
2: So we go a long way back, and what the knowledge you have got,
0: yes,
2: is phenomenal.
0: Thank you so much. Thank you. And
2: yeah,
0: once again, congratulations. And Debuda, bon voyage. Yeah. Jab bhi London aoge, hum definitely mulaqat karenge. And you have to come to Laika studios to talk to public.
1: Why not?
0: Abhi ye gana jo tha, sure. दुल्हन वाला,
1: दुल्हन,
0: हाँ, दो लाइन सुना दो ना, दुल्हन वाला गाना.
1: दुल्हन तू दूल्हा मैं बन जाऊंगा, दुल्हन तू दूल्हा मैं बन जाऊंगा.

बस्ती के दियों को बुझ जाने दे, लहरा के न रुक रुक जाना, चाहत का लबों

0: now visit starters.co.uk or call 0208-900-2323.
1: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाएं 0208-8839-0880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
2: लोकेशन, लोकेशन, लोकेशन।
3: इन रियल एस्टेट लोकेशन इज एवरीथिंग एंड दिस वन इज अ विनर।
2: इंट्रोड्यूसिंग ग्रीन्स बाय डैनियो, अ प्रीमियम कलेक्शन ऑफ टाउनहाउसेस एंड विलास
3: लोकेटेड इन दुबई इन अ प्राइम लोकेशन फॉर हाई अप्रिसिएशन।
2: स्टेप इनसाइड एंड वॉक इनटू फुल्ली फर्निश्ड टाउनहाउसेस एंड विलास विद प्रीमियम इटालियन फर्निशिंग्स।
3: स्टेप आउटसाइड एंड एंजॉय 50+ एमिनिटीज इनसाइड द मास्टर कम्युनिटी।
2: एंड द बेस्ट पार्ट, टाउनहाउसेस एंड विलास ग्रीन्स स्टार्ट फ्रॉम जस्ट £711,000।
3: टू बुक कॉल आवर लंदन ऑफिस ऑन 0203963-5757। ग्रीन्स बाय डैन्यूब, प्राइम लोकेशन,
2: हाई अप्रिसिएशन
3: इन दुबई।
4: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय।
5: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस।
4: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस।
5: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम।
4: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस।
5: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com। लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
6: Sonatours.co.uk special offers with amazing discount. 16 days China for 2027. Book before the end of August and get 400 off or lose the discount. Call Sonatours on 0208-951-0111. From breathtaking wedding jewelry to the finest diamond rings, do come in and see us at Minar Jewelers to create the perfect symbol of your love story. Minar Jewelers, the diamond specialists. Call 0208-767-2142.
7: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. Take your taste buds to the next level with Tilda.

0: ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਗੋਲਗੱਪਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ
1: All Mamster products are nut free and made in Canada now available at quality food branches
2: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड और हाँ मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी तो इंतजार मत कीजिए अभी कॉल करें 0208150 2025 और विजिट meraboiler.com टीज एंड सीज अप्लाई
3: लंदन वालों ध्यान से सुन लो कि फर्नीचर की धमाकेदार फ्लैश सेल आ गई है शानदार इटालियन और जर्मन डिजाइन वाले बेडरूम और डाइनिंग फर्नीचर पर भारी छूट का फायदा उठाइए गद्दों और अलमारियों पर जबरदस्त कटौती सभी दीवान सेट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त हेडबोर्ड सभी सामान तत्काल डिलीवरी के लिए दस्तयाब हैं जल्दी कीजिए ये फ्लैश सेल सोमवार शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी आज ही हमारे हैरो पिकलवुड और स्लॉग के शोरूम्स में आइए या फिर keyfurniture.co.uk पर जाएं
1: Creative Team Events and Peace Nation UK brings to you the King of Sufi Music, Lakhvinder Vidali, to London and Birmingham. This October, for sponsorship inquiries, call 07959-250-376.
2: Sonatours.co.uk special offer holiday of a lifetime with amazing discount. 14 days Canadian Rockies and Alaska cruise in 2027. Book before the end of August and get 600 off or lose the discount. Call Sonatours now on 0208-951-0111.
4: Sandy Shah continues with London's biggest Bollywood classics. Like a Goon, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and likeagoon.com. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
5: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: This is Sandy Shah on Gold Drive.
1: Us kids are mesmerised by the mundane, entranced by the everyday. Where grown-ups see a snail, we see a slippery-shelled beast from the undergrowth. But around 1 in 5 young children have a sight condition that can get in the way of all that wonder. The good news is, if these are found early, they can be managed or corrected.
2: So book your child a free eye test at Specsavers today. Find out more at specsavers.co.uk/kidstests.
3: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
4: TravelHub, best service with unbeatable price.
3: At all protected.
4: Visit TravelHubWorld.com.
5: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
6: 07300998823. नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेजन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को. सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे. विवेक हाउस वॉटफर्ड, बुक ऑन व्हाट्सएप 07300998823.
7: साउथ हॉल, देसी स्वाद का असली अड्डा आ गया है.
8: परंपरा भी
9: बीकानेर वाला में मिलेंगे फेमस छोले भटूरे, टेस्टी स्नैक्स, मिठाई और फैमिली के साथ यादगार मोमेंट्स. आइए 60 किंग स्ट्रीट साउथ हॉल UB2 4DB. कॉल 07795181001.
10: मेगा ब्लॉकबस्टर धुरंधर.
11: Mega Blockbuster Dhurandhar, 15th and 16th of August at 9 PM on Utsav Gold. Title sponsor Watchdog Security. Associate sponsor Lemfi.
12: Leica Radio Network, proud hospitality partner Ragasan.
13: Look, there's a snail and its eyes are sticking out of its tentacles. It looks like an ice cream.
14: Ella sees a lot more than just a snail. With free kids' glasses from Specsavers, plus a second pair from £10, they'll see a world of wonders. And you'll see a great deal too. So book them an appointment at Specsavers today for free. £10 second pair with free glasses from our £65 and above range.
13: Conditions apply. See online for details.
0: Gold Drive with Sandy Shah.
15: बजट टाइट पर ब्रांड का इम्पैक्ट बड़ा चाहिए. लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड लाए हैं आपके लिए परफेक्ट पैकेज. रेडियो, डिजिटल या इवेंट, सब कुछ मिलेगा कस्टमाइज्ड. जल्दी करिए, कॉल नाउ 0207-132-1458 या लिखिए sales@laikaradio.com.
16: नमस्कार, रवि शर्मा रोज आपकी सेवा में हाजिर होता हूँ मंडे टू फ्राइडे. जुड़िएगा मेरे साथ 10 से 1 बजे के बीच मंडे टू फ्राइडे, मनोरंजन विद रवि शर्मा.

0: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, Gold Souk, desert safaris and Dhow Cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
1: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
2: Southall Travel, Atoll Protected.
3: Anuj Chopra Foundation proudly presents An Evening of Elegance, hosted by Anisa Nasir. Taiyar ho jaiye ek yaadgar sham ke liye, jahan ghazals milti hai Bollywood se.
4: Jaam chalne lage.
3: With the legendary Anoop Chalota on Sunday, 30th August at Queen's Theatre, Romford. Doors open 5 PM. Show starts 6 PM. Tickets starts from £40. Book now at queens-theatre.co.uk. Radio partners like our radio network.
5: वॉटफुट में डिनर प्लान्स, थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी,
6: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन.
5: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स, बटर चिकन, पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक, फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स, हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम.
6: फ्रेंड्स, फैमिली या स्पेशल नाइट आउट, इसे यादगार बनाइए. विजिट विवेक हाउस वॉटफुट. कॉल 01923227274. बुक योर टेबल टुडे.
7: Ilford, अब असली इंडियन फ्लेवर्स का मजा लीजिए.
8: बीकानेर वाला परंपरा भी,
9: फेमस छोले भटूरे, राज कचौरी, मिठाई और बहुत कुछ आपका इंतजार कर रहा है. मिलते हैं 513-519 क्रैनब्रुक रोड, गैंसल, इल्फोर्ड, IG26HA. कॉल 07555-506015.
6: लंदन वालों, ध्यान से सुन लो कि फर्नीचर की धमाकेदार फ्लैश सेल आ गई है. शानदार इटालियन और जर्मन डिजाइन वाले बेडरूम और डाइनिंग फर्नीचर पर भारी छूट का फायदा उठाइए. गद्दों और अलमारियों पर जबरदस्त कटौती, सभी दीवान सेट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त हेडबोर्ड, सभी सामान तत्काल डिलीवरी के लिए दस्तयाब हैं. जल्दी कीजिए, ये फ्लैश सेल सोमवार शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी. आज ही हमारे हैरो, पिकलवुड और स्लॉग के शोरूम्स में आइए या फिर keyfurniture.co.uk पर जाएं.
10: Dreaming of Europe and the UK? Travel with Mantra Holidays and explore the breathtaking Scottish Highlands, the dramatic landscapes of Snowdonia and the stunning coast of Cornwall. Then journey through Europe from the majestic Swiss Alps to romantic Paris and the timeless beauty of Italy.
11: Visit mantraholidays.co.uk or call 020-377-3633 now. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
12: Mum always said, beta, clove and neem keep the mouth healthy. Now that same trusted wisdom comes from Baidyanath, over 100 years of Ayurvedic legacy in Siddhayu toothpaste. Fresh breath, strong gums, pure herbal care. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK. Siddhayu, Ayurveda that fits your life.
13: Gold Drive with Sandy Shah.

0: Mamster Golgappe at Golgappiyan da Pani.
1: All Mamster products are nut free and made in Canada. Now available at your nearest Asian grocery store.
2: एक ऐतिहासिक अने दिव्य अवसर पेरिस मा भव्य बीएपीएस स्वामीनारायण मंदिर ना ग्रैंड ओपनिंग मा दर्शन नो लाभ आप पवित्र यात्रा मा जोड़ाओ आपना परिवार साथे जहां मड़शे शांति भक्ति अने आनंद अने साथे आईफिल टावर सेन रिवर क्रूज अने पेरिस सिटी टूर नो आनंद मानो डिपार्चर 5 सितंबर ना मंत्रा हॉलीडेज कॉल करो 0203-773-6333 मंत्रा हॉलीडेज व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा
3: अटेंशन The ITEC Desi Independence Food Festival and Trade Week is on from the 3rd to the 9th of August at ITEC Cash and Carry Southall with unbeatable wholesale deals on rice, dairy, frozen foods, fresh produce, catering, essentials and much more. Don't miss live tastings on the 5th and 6th of August plus exclusive offers all week. Visit Unit 123 Southbridge Way, Southall, UB2 4AX or call 0203 393 5225. ITEC Wholesale, open 24/7, everything your business needs, all under one roof.
4: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Gold Drive with Sandy Shah.
5: आवाजों में ताकत होती है जब वो सही जगह तक जाती है. Like a Radio और Like a Gold आपकी आवाज बन सकते हैं. On air हो, online या on ground, हर प्लेटफॉर्म पर आपका ब्रांड चमकेगा. संपर्क करें 0207-132-1458 या ईमेल sales@lykaradio.com.
6: This superhit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. With a range of grains and flavors from around the world, you can make every meal memorable.

0: Drive with Sandy Shah. Oh yeah. Leica Gold Traffic and Travel.
1: This is Martin with your travel. The A312 Church Road and Mandeville Road still heavy from the White Hart roundabout to the Target roundabout and then on to North Holt Station. The 4020 Uxbridge Road is heavy between the A312 The Parkway and Southall Park. Slowing on the A406 North Circular Road both ways at the Hangar Lane Jarretery. A3 West Hill has eased now northbound between Tibbetts Corner and Upper Richmond Road. A316 Chertsey Road flowing fine again westbound. You head from Twickenham Bridge to Hospital Bridge Road roundabout to the Tube and severe delays on the Piccadilly line between Acton Town and Heathrow Airport. That's due to an earlier fire alert at Boston Manor.
2: Ye hai Leica Gold, 10:35 AM.
0: This part of the show is brought to you by 108 Base Hospital Uri. Starts 15th of August every Saturday and Sunday at 7 PM on Colours TV.
3: I hope Major Nana hum log waqt par pahunche.
4: श्रावण के पवित्र महीने में करें भगवान शिव की आराधना। परम पूज्य संत श्री चिन्मयानंद बापू जी के श्रीमुख से सुनिए श्री शिव महापुराण कथा। 13 अगस्त से 19 अगस्त तक हिंदू सनातन मंदिर ईलिंग रोड वैमली में। समय दोपहर बाद 3 बजे से शाम 7 बजे तक। नित्य कथा और महाप्रसाद की पावन व्यवस्था का आनंद लें। शिव महापुराण का अपने पूर्वज माता पिता के नाम से मूल पाठ, डेली यजमान और सेवा के लिए संपर्क करें 07930271934। वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाएं। फौरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
5: यू नो दैट क्लीन फ्रेश फीलिंग after brushing? Siddhayu toothpaste takes it to another level. Clove, neem, herbal actives, proper Ayurvedic care, but modern and premium. Fresh breath, healthy gums, no harsh chemicals. From the house of Baidyanath, with over 100 years of Ayurvedic legacy. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK. Siddhayu, Ayurved that fits your life.

0: Now visit starters.co.uk or call 208-900-2323.
1: किटी पार्टी हो या फैमिली का कोई भी ओकेजन हो या फिर बिजनेस रिलेटेड कोई भी गेट टुगेदर,
2: अब हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश एट विवेक हाउस गॉडफादर एंड को. स्वादिष्ट साउथ एशियन खाना, 5-course lunch सिर्फ £35, जबरदस्त एम्बियंस और कन्वीनियंट कार पार्किंग अवेलेबल एट हॉलिडे इन वॉटफोर्ड. तो देर किस बात की, बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 07300998823.
3: Discover Malta and Gozo with a Twin Center Island Escape. Fly from a choice of UK airports year-round and enjoy 3 nights in Malta. A ferry trip to Gozo for another 3 nights and more. Prices start from just £399 per person. For great deals on cruise and holidays, visit Skylord Cruise and Holidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.
4: Khakra Crunch, Bhakri Munch, Chikki Sweet, Papad Beet, Pickles Heat. Ye hai Jaimin Foods ka Vibe Check.
5: Add desi tadka to your routine with Jaimin Food ke variety of snacks. Khakra, namkeen, papad, pickles, chikki, pot meals and much more.
4: Jaimin Foods, desi cravings. Available at nearest ethnic grocery stores.
6: हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सरिता सबरवाल. एवरी वीकेंड 4 till 7 बहुत सी मीठी मीठी बातें आपके साथ शेयर करती हूँ. सैटरडे एंड संडे मेरे साथ ही रहेंगे.
7: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स.

0: to India, Pakistan, Dubai, Maldives, Thailand, USA, Canada, Africa, Australia and New Zealand, call Southall Travel 24 hours a day, 7 days a week on 0208 574 8410.
1: ढलती शाम ले चलिए हमें सुहानी रात की ओर द इवनिंग शो विद अश्विनी में तैयार हो जाइए फॉर फैंटास्टिक मेलोडियस जर्नी यादों की बारात इमोशन ऑफ द डे गजल या कवाली मैं क्या सुनाने वाली लेकिन उसके पहले वॉल्यूम अप कर लीजिए क्योंकि दोनों ही गीत आपको बेहद पसंद आएंगे दिस इज द इवनिंग शो विद अश्विनी
2: Let's return to the biggest hits back to back. Sponsored by TravelHubWorld.com. For the best service and unbeatable prices, visit TravelHubWorld.com. TravelHubWorld.com.
3: हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता.
4: TravelHub.
3: At all protected.
2: Leica. The Leica Radio Network. The perfect soundtrack for a British summer heatwave.

0: भाई जिन्होंने अभी भी ट्यून इन किया है, आप सभी सुन रहे हैं लाइक अ गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइक अ रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। दिस इज द इवनिंग शो विद अश्विनी। 3rd of August मोटिवेशनल मंडे मनाएंगे आप और हम साथ में यहीं पे। नया दिन, नया वीक, नया महीना, हैप्पी न्यू मंथ भाई, क्योंकि मैं तो आज मिल रही हूँ आपसे, है ना, वीकेंड पे नया महीना शुरू हुआ। सो ये न्यू मंथ, न्यू वीक, नया दिन आई एम श्योर आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज लेके आया होगा, लेकर आएगा। पूछिए आप सबसे कैसे हैं आप सब, बढ़िया है ना। मंडे इवनिंग आ गई है, चिलैक्स हो जाइए, रिलैक्स हो जाइए। मंडे ब्लू ग्रीन येलो जो भी है सब अब साइड में रख देंगे, क्योंकि आप सभी ने ट्यून इन किया है आपका अपना शो, जहाँ पे गपशप होती है, इंटरेक्शन होती है, कुछ आपके मन की बातें होती हैं, कुछ हमारे अनुभवों की बातें होती हैं और कुछ होती हैं लाइफ थियरी के बारे में बातें। तो क्या मैं कोई लाइफ थियरी सुनाऊंगी? ज़रूर सुनाऊंगी। और हमेशा की तरह होमवर्क होगा? जी हाँ होगा। तो अटेंडेंस रजिस्टर खुल चुका है और सारे के सारे धुरंधर आके अपनी अपनी अटेंडेंस लगवा रहे हैं। आइए आइए जी, स्वागत है आप सभी का। तो होमवर्क क्या देने वाली है अश्विनी? चलो, नया महीना है, नया वीक है, बहुत ही सिंपल सा होमवर्क है आज, कोई मतलब कॉम्प्लिकेट ऐसा होमवर्क नहीं है। द इवनिंग शो विद अश्विनी, पिछले 3 महीने के ऊपर हो गए आप ये शो सुन रहे हैं। इस शो का कौन सा सेगमेंट आपको ज़्यादा अच्छा लगता है? यादों की बारात, इमोशन ऑफ द डे, गज़ल या कव्वाली, या लाइफ थियरी जो मैं आपको सुनाती हूँ? यादों की बारात, इमोशन ऑफ द डे, गज़ल या कव्वाली, या थियरी जो लाइफ थियरी के बारे में बात होती है, इनमें से आपको कौन सा सेगमेंट अच्छा लगता है? आज मैं आप सबसे ये जानना चाहती हूँ। बाकी तो सवाल जवाब आपके और हमारे चलते ही रहते हैं।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: For £1, you'll get 127 Indian rupee and 65 paise. एंड बिल्कुल SBI के लिए जब भी आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो ज़रूर ध्यान रखिएगा SBI का योनो ऐप। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.

0: व्हाट अ लवली ट्रैक, मन्ना डे और आशा भोसले की आवाज में काला बाजार से सुनाया ये गीत। आई थिंक काफी समय बाद आपने और हमने ये गीत सुना है ना साथ में। मिला लेंगे घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है। 7:19 हो चले हैं, इट्स 7:19। आप सभी ने ट्यून इन किया है द इवनिंग शो विद अश्विनी। मैं आप सबसे पूछ रही हूँ कि आप द इवनिंग शो विद अश्विनी 3+ months हो चुके हैं ये आप शो सुन रहे हैं, सो आप सभी का फेवरेट सेगमेंट इसमें क्या है? यादों की बारात, इमोशन ऑफ द डे, गजल या कवाली, लाइफ थियरी, मेरी आवाज़। चलो कुछ लोगों ने जैसे भेजा है कॉम्प्लीमेंट कि उन्हें क्या पसंद है, मेरी आवाज़ सुननी पसंद है आप लोगों को, गीत तो ऑब्वियसली उसके बारे में मैंने पूछा है, पोएम्स जी जो थर्सडे मेरी अपनी लिखी हुई पोएम्स आपको सुनाती हूँ वो चूज़ कीजिए इसमें से, अभी भी टाइम है। लाइफ थियरी के बारे में बात करेंगे कुछ ही देर में। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में 3 देवियां फिल्म से सुना रही हूँ आप सभी को, बड़ा ही लवली ट्रैक। ऐसे तो ना देखो, ये देखो ना गीतों के कितने मज़े होते हैं ना, कि कोई हमारी तरफ प्यार से देख रहा है तो हम कितने प्यार से मोहम्मद रफ़ी स्टाइल में कहेंगे ऐसे तो ना देखो, और कोई गुस्से में हो तो ऐसे तो मत देखो। एनीवेज गपशप चलती रहेगी। दिस इज द इवनिंग शो विद अश्विनी।
1: दिस इज अश्विनी ऑन लाइक अ गोल्ड। This part of the show is brought to you by 108 Base Hospital Uri. Starts 15th of August every Saturday and Sunday at 7 PM on Colors TV.
2: I hope Major Naina, hum log waqt par pahunche.
3: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home. Now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best gara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
4: Discover Turkey with a beach and touring escape. Fly from the UK, enjoy 7 nights all-inclusive beach stay, then experience a 3-day escorted tour in Cappadocia. Prices lead in from just £1,199 per person. For Turkey holidays with a difference, visit Skylord Cruise and holidays.com or call 019-238-83100. Atoll protected.

0: visit starters.co.uk or call 0208-900-2323.
1: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
2: वॉटफुट में डिनर प्लान्स, थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी,
3: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन.
2: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स, बटर चिकन, पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक, फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स, हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम.
3: फ्रेंड्स, फैमिली या स्पेशल नाइट आउट, इसे यादगार बनाइए. विजिट विवेक हाउस वॉटफुट. कॉल 0192322774. बुक योर टेबल टुडे.
4: Laika Gold, London का number one Asian retro music station, अब available है Greater London में 10:35 AM पर DAB Digital Radio पर. Alexa पे बोलो play Laika Gold और online सुनो laikagold.com पे.
5: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
6: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com. चलिए अब समय होता है लाइफ थियरी के बारे में बात करने के लिए. नया सप्ताह मंडे, यानी बहुत सारी नई चीज़ें और बड़े सारे अनुभव इस सप्ताह आने वाले हैं. हर सप्ताह ही आते हैं, लेकिन जब नया सप्ताह आता है तो वो कुछ ना कुछ अनुभव तो हमारे लिए लेके आएगा. तो बात करते हैं द एम्प्टी बोट थियरी के बारे में. एक मंक एक छोटी सी बोट में बैठ के एक तालाब में घूम रहे थे. उन्होंने सोचा कि इतना शांत माहौल है तो क्यों ना इसमें बैठ के मेडिटेशन किया जाए. वो छोटी सी नाव में उन्होंने आलती पालती मारी, आंखें बंद की और अपना मेडिटेशन शुरू किया. वो काफ़ी डीप मेडिटेशन में चले गए, ध्यान में चले गए और थोड़ी देर बाद उनकी बोट को ज़ोर से धक्का लगा. अभी इतने डीप मेडिटेशन में थे और इनकी नाव इतनी ज़ोर से हली ना, तो ये भी फिर घबरा के इन्होंने आंखें खोल दी और जैसे वो नाव देखी तो ज़ोर से ये चिल्ला पड़े, कैसे हो, दिखता नहीं है क्या? मैं यहाँ पे मेडिटेशन कर रहा था, ध्यान लगा के बैठा था, ऐसे कैसे नाव चलाते हो? अब इन्होंने ज़ोर से बोल तो दिया और इनका एंगर बहुत बड़ा था. अब जब इंसान एंगर में होता है तो उसे लगता है कि किसे पकड़ के किसे डांट लगाई जाए. तो उन्होंने उस बोट में देखा, ज़रा ध्यान से देखा तो उस बोट में कोई था ही नहीं, वो तो खाली बोट थी. उसे शायद किसी ने उस नाव को बांध के नहीं रखा था किनारे पे. अब जैसे ही उस मंक के ये समझ में आया कि ये बोट तो खाली है, तो उनका गुस्सा एकदम ही शांत हो गया, क्योंकि उस बोट में कोई था नहीं, किससे ही बात करते. अब इसका हमारी लाइफ से क्या लेना देना? हमारे साथ भी ऐसा होता है. हम सोचते हैं कि हम बड़े सुलझे हुए हैं, हम सॉर्टेड है भाई, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं. प्रॉब्लम तो सामने वाले का है, प्रॉब्लम तो दूसरे लोगों का है. हम क्या करते हैं, हम बहुत अच्छे से ना ब्लेम गेम खेलते हैं. कुछ भी इंसिडेंट हो जाए, कुछ भी कहा सुनी हो जाए, अपनी अकाउंटेबिलिटी हम नहीं लेते. हम हमेशा दूसरों को दोष देते हैं कि इसकी वजह से ऐसा हुआ, इसने ये किया तो मैंने ये किया. पर उन दो इंसानों में से कोई एक भी अपने बिहेवियर के बारे में अकाउंटेबिलिटी नहीं लेता, अपने बिहेवियर की जिम्मेदारी नहीं लेता. एंड इसी के चलते बहस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती, क्योंकि वो एंगर होता है. वो देखिए, वो एंगर ना आपका अपना है. आप कितनी अवेयर स्टेट में हैं ये आपके लिए ज़रूरी है. हम सभी जो हैं, बचपन की 7 साल की उम्र तक हमने जो भी अपने लाइफ में अनुभव किया है ना, उसी का प्रोडक्ट हम आज हैं, चाहे आप किसी भी एज में हो. माँ बाप, घर का माहौल, सिटी का माहौल, कॉलोनी का माहौल, गांव का माहौल, जहाँ से भी आप आते हैं, उस माहौल का, उस अपब्रिंगिंग का आप पे बहुत गहरा इम्पैक्ट है. लेकिन जिस दिन आप सजग हो जाएं, जिस दिन आप अवेयर हो जाएं कि अरे ये बिहेवियर तो ये सही नहीं है बाबा, इस पे मुझे काम करना चाहिए. एक तो ये समझ में आता नहीं जल्दी, और कोई दूसरा अगर समझाने जाए तो सामने वाला अपने एंगर में इतना व्यस्त होता है कि उसकी बात ही नहीं सुनता. एक तो पहले सुन के समझने की कोशिश कीजिए और अपने अंदर झांकिए कि प्रॉब्लम क्या है, गलती कहाँ हुई. आप और हम इस एज में हैं आज कि हम सभी जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं और इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है, इसके रिपरकशंस क्या होंगे. हम सब भली भांति जानते हैं कि हम जो एक्शंस ले रहे हैं, जैसे बोल रहे हैं, जैसे बिहेव कर रहे हैं, इसके बाद सामने वाला इंसान हमसे संबंध रखेगा या नहीं, या आगे चीज़ें क्या होगी. लेकिन फिर भी हम ये करते हैं क्योंकि हमें अपने मन की भड़ास निकालनी होती है, हमें अपने मन की चीज़ कहनी होती है. लेकिन ध्यान से समझिए इस चीज़ को. जिस दिन आप इस अवेयर स्टेट में आ जाएंगे ना कि अपने बिहेवियर की अकाउंटेबिलिटी लेके उस पर काम करना शुरू करेंगे, आई थिंक बहुत सारे रिश्ते बच जाएंगे. सबसे पहले आपका अपने आप से रिश्ता बहुत सुंदर बनेगा, और जिस दिन आपका रिश्ता अपने आप से सुंदर बन गया, तो मैं बिल्कुल आपको ब्लैंक पेपर के साइन करके देती हूँ कि आपके रिश्ते सब, बाकी जितने भी लोग हैं आपकी ज़िंदगी में, उनके साथ भी आपके रिश्ते बहुत बेहतरीन बनेंगे. कैसी लगी एम्प्टी बोट थियोरी, और क्या आप अपनी अकाउंटेबिलिटी लेने के लिए तैयार हैं? हाँ, मुझे मत बताइए. लाइफ है आपकी, क्योंकि डिसीजन है आपका. ज़रूर बताइएगा थियोरी कैसी लगी. ये है like a gold.
0: Nykaa Gold, The Evening Show with Ashwini.
2: का वीकेंड और भी सुहाना द रितु शर्मा शो में एवरी वीकेंड 10 AM टू 1 PM ऑन लाइका गोल्ड रेडियो, लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो मिडलैंड्स पर।

0: Starfall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
1: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
2: Southall Travel, at all protected.
3: 0730998823. नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेशन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को. सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे. विवेक हाउस वॉटफर्ड, बुक ऑन व्हाट्सएप 0730998823.
4: साउथ हॉल, देसी स्वाद का असली अड्डा आ गया है.
5: परंपरा भी बीकानेर वाला में मिलेंगे फेमस छोले भटूरे, टेस्टी स्नैक्स, मिठाई और फैमिली के साथ यादगार मोमेंट्स. आइए 60 किंग स्ट्रीट साउथ हॉल, UB2 4DB. कॉल 0775-181-001.
6: पैक्ड फॉर द ट्रिप? Gifts? Passport?
7: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
8: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
7: Simzy?
8: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
9: Plans for Asia, Europe and beyond. Search Simzy.com. That's SIMZY.com.
10: T's and C's apply.
11: लंदन वालों ध्यान से सुन लो कि फर्नीचर की धमाकेदार फ्लैश सेल आ गई है. शानदार इटालियन और जर्मन डिजाइन वाले बेडरूम और डाइनिंग फर्नीचर पर भारी छूट का फायदा उठाइए. गद्दों और अलमारियों पर जबरदस्त कटौती, सभी दीवान सेट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त हेडबोर्ड, सभी सामान तत्काल डिलीवरी के लिए दस्तयाब है. जल्दी कीजिए, ये फ्लैश सेल सोमवार शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी. आज ही हमारे हैरो, पिकलवुड और स्लॉग के शोरूम्स में आइए या फिर keyfurniture.co.uk पर जाएं.
12: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150-2025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply.
13: मीनार ज्वेलर्स, अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर, 181 अपर टूटिंग रोड, या विजिट कीजिए meenarjewelers.com. कॉल 0208767-7627.
14: द इवनिंग शो विद अश्विनी.

0: चलिए मिला लेंगे घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है। इट्स नियरली 55 मिनट्स पास्ट 7। आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। चोर मचाए शोर सी, लता मंगेशकर एंड मोहम्मद रफी की आवाज में एक ताल पर तोता बैठे, ये गीत सुनाया आप सबको। तो मैंने सवाल जो पूछा था प्रोग्राम के स्टार्टिंग में कि आपको कौन सा सेगमेंट अच्छा लगता है, तो मोस्ट ऑफ द पीपल ने कहा कि जो लाइफ थियरी तुम सुनाती हो अश्विनी, वो हमें बहुत पसंद है। कई लोगों ने कहा तुम्हारी आवाज़, कई लोगों ने कहा तुम्हारी लिखी हुई कविता, तुम्हारी लिखी हुई पोएम जो तुम थर्सडे सुनाती हो, कई लोगों ने कहा बाकी तो गाने तो चलते ही रहते हैं लेकिन जो अलग अलग फ्लेवर्स तुम लेके आती हो गप्पों में, उसमें बड़ा मजा आता है। ओके जी, थैंक यू जी। लास्ट गीत ऑफ दिस आवर,
1: Forgotten Memories Refreshed, Like a Gold।

0: वेलकम, दिस इज द सेकेंड आवर ऑफ द इवनिंग शो विद अश्विनी। तीन गाने सुनाए आपको, क्या रीजन था भाई? बस सोचा क्यों ना आज इनको गाने पहले सुना दिए जाए और आके फिर गपशप की जाए। पहला गीत हमने लिया था यस बॉस से, तो 90s वाले बच्चे खुश हो गए। उसके बाद हमने लिया था 1983 में रिलीज हुई फिल्म बड़े दिल वाला से, लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाज़ में, कहीं ना जा आज कहीं ना जा, तो 80s वाले खुश हो गए। और अब 70s वाले बच्चे खुश हो गए, हुए कि नहीं मुझे मैसेज करके बताओ। किशोर कुमार आशा भोसले की आवाज़ में ओ मेरे राजा, इसमें देवानंद एंड हेमा मालिनी की जो एक दूसरे की टांग खिंचाई भी चलती है, गुस्सा भी दिखता है, प्यार भी दिखता है। आई लव दिस ट्रैक। जिस तरीके से ये दोनों भी चल रहे हैं और इनके पीछे वो पुलिस चल रही है, और जब वो हीरो हीरोइन मुड़ के देखेंगे तो पुलिस भी इधर उधर देखने लगेगी, ये मुझे बड़ा फनी लगता था। आई डोंट नो आप लोगों को ये याद है कि नहीं ये वाला, बट ये दिस गाना बहुत अच्छे से मुझे याद है। सो अब सेकेंड आवर में मोटिवेशनल मंडे मनाते हैं हम। देखिए हर एक दिन का इम्पोर्टेंस होता है, तो हम मोटिवेशनल मंडे, टेरिफिक ट्यूसडे, एक फील गुड वेंसडे, थ्रिलिंग थर्सडे एंड फैंटास्टिक फ्राइडे मनाते हैं। मोटिवेशनल मंडे इसलिए क्योंकि दिन मतलब ये जो है सप्ताह का पहला दिन है, और सभी मंडे को लेके बहुत स्ट्रेस होते हैं। मेरे जैसे शायद कम ही ऐसे कुछ लोग होंगे जो बहुत उत्साहित होते हैं अपने जॉब पे आने के लिए, बिकॉज आई टेरिफिकली लव माई जॉब। एंड यहाँ पे आके सबसे मेन बात ये होती है कि आप सबसे मुलाकात होती है, तो वही तो अब जब सैटरडे संडे शो नहीं होता है मेरा, तो कितने हमारे प्यारे लिसनर्स हैं वो कहने कि अच्छा भाई हिसाब दो, चलो दो दिन में दो दिन तुमने शो नहीं किया तो अच्छा, पूरी पूरी कसर निकालने की कोशिश होती है मंडे वाले शो में कि सभी गीत जो है बड़े चुनिंदा हो, कि दो दिन जो मैं आपके लिए हाजिर नहीं थी यहाँ पे उसकी पूरी कसर यहाँ पे निकाली जाए। नेक्स्ट ट्रैक लता मंगेशकर की आवाज़ में तलाश फिल्म से, ओहो हो क्या बात है, ब्यूटीफुल ट्रैक, कितनी अकेली कितनी तन्हा। पुराने गीतों का ना अपना एक मज़ा हुआ करता था, जो ठहराव रोमांस भी है ना, वो रोमांस भी इतना प्योर लगता था ना उस टाइम पे सुनने में, एंड लिरिक्स बहुत ही मज़ा आ जाता है। और भी ढेर सारी गपशप होने वाली है, लेकिन उसके पहले जरा हो जाए SBI रेट्स।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: एक पाउंड के बदले आपको मिलेगा 127 इंडियन रुपी एंड 65 पैसे। Don't forget to exchange in branch, online or SBI Yono mobile app. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Ever get giddy renewing your car insurance? Fantasize about finance offers or paying your service bill? Probably not. After all, the best bit about driving a BMW is driving it. So leave the admin and skip to the best bit. Choose a new BMW 1 Series or 2 Series Grand Coupe by the 30th of September to enjoy a year's insurance, 3 years servicing, plus 2.9% APR representative. Search BMW, skip to the best bit. BMW UK Limited is a credit broker, not a lender. BMW Finance, T's and C's apply. Insurance age restrictions and exclusions apply. Whew, that's the admin over with.
1: This is Ash Winnie on Like a Gold.
3: This part of the show is brought to you by 108 Base Hospital Uri. Starts 15th of August every Saturday and Sunday at 7 PM on Colors TV.
4: I hope me janena hum log waqt par pahunche.
5: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रेवल कीजिए। दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए। आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू।
6: विजिट mantrahalidays.co.uk और कॉल 02030773633 नाउ। एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज, व्हाट्स your travel mantra.
7: Anuj Chopra Foundation proudly presents An Evening of Elegance, hosted by Anisa Nasir. Taiyar ho jaiye ek yaadgar shaam ke liye jahan ghazals milti hai Bollywood se.
8: Shaam chalne lage dil mat.
7: With the legendary Anup Chalota on Sunday 30th August at Queen's Theatre, Romford. Doors open 5 PM. Show starts 6 PM. Ticket starts from £40. Book now at queens-theatre.co.uk. Radio partners, Leica Radio Network.
9: वेडिंग्स, सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाए 0208839080 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
10: हेरल्ड, न्यू वर्ल्ड ऑफ eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
11: Discover unique Grand Prix holidays with flights, race tickets and hand-picked stays. Combine iconic motorsport weekends with city breaks, beach escapes or even cruise experiences for the ultimate getaway. Prices start from just £799 per person. Visit skylordcruiseandholidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.
12: Lycagoon, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and Lycagoon.com. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
13: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: बड़ा वंडरफुल ट्रैक हाँ था ना मैंने बड़ा ही ठहराव वाला बड़ा प्यार या बड़ा ही प्योर रोमांटिक ट्रैक है ना. रोमांस में प्योरिटी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है. बहुत सुंदर होता है प्यार और जिस तरीके से हम उसे व्यक्त करते हैं उस पर तो आई थिंक बहुत निर्भर करता है कि प्यार को हम कैसे देखते हैं. अच्छा, जब आप लोग बाहर घूमते रहते हैं तो क्या आप आसपास की चीज़ें देखते रहते हैं? पिछली बार हमने इसके बारे में बात की थी. सो आई जनरली टेक माई डॉग माई पीचेस फॉर अ वेरी लॉन्ग वॉक. हम लोग जब पार्क में जाते हैं, बड़ा सा पार्क है, वहाँ पे घूमते घामते हम लोग देखते भी रहते हैं आसपास क्या चल रहा है. तो कई बार होता है कि हमें कुछ हमारी विशलिस्ट ना बाकी रह जाती है और हम सोचते हैं कि नहीं, उम्र का तकाजा है, अब मैं कैसे सीखूंगी या कैसे सीखूंगा. सो पार्क में मैंने एक महाशय को देखा. ही वाज 55 और वो स्केटिंग सीख रहे थे अपने आप से, ना कोई उन्हें सिखाने वाला था ना कोई और. एंड मुझे बड़ी उत्सुकता हुई. मेरे साथ में ये है कि बिकॉज ऑफ दिस रेडियो प्रोफेशन ना, आई हैव बिकम वेरी कम्फर्टेबल टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स. एंड देखिए, किसी भी इंसान के लिए दे नीड टू बी सीन, दे नीड टू बी हर्ड. एंड आई थिंक दैट्स वॉट एज ह्यूमन्स वी कैन डू. और मैं गई उनसे बात किया, मैंने कहा कि आप काफ़ी शिद्दत से स्केटिंग सीखने की कोशिश कर रहे हैं शायद. तो कहते हैं कि हाँ, मेरी एज 55 है एंड मुझे बहुत सालों से स्केटिंग सीखना था. अब मैंने अपने जॉब से रिटायरमेंट ले ली है, जल्दी ही रिटायरमेंट ली, लेकिन मैं अपने इस पैशन को फॉलो करना चाहता हूँ. और हम काफ़ी देर तक गपशप करते रहे. मुझे बड़ा अच्छा लगा उनसे गपशप करते हुए. एंड आई वाज लाइक कि हाँ, हम लोग कई बार कैसे ना रीजंस दे देते हैं कि हमें कुछ चीज़ें अगर नहीं करनी, अरे ये हो गया वो हो गया, ना ना डोंट डू दैट, यू नो, इफ़ यू वांट टू डू समथिंग. उम्र तो एक नंबर होती है ऑब्वियसली. आपका शरीर भी अगर साथ दे रहा है तो कुछ एक्टिविटीज़ आप डेफिनेटली कर सकते हैं, स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ है ना, वो तो एक चीज़ होती है. लेकिन ऑब्जर्वेशंस करना, छोटी छोटी खुशियाँ मिलती हैं. बिकॉज व्हेन आई वॉक थ्रू द पार्क, और वहाँ पर एक पॉन्ड है और एक बच्चे ने एक उसमें एक पत्थर फेंका, उसके बाद जो रिपल्स आई है ना, वो छोटी छोटी सी रिपल्स को हिंदी में क्या कहते हैं, सॉरी मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है, लेकिन जब रिपल्स जो ना जाती है वो किनारे तक जाती है, वो देखने में मुझे बड़ा मज़ा आता है. एक अजीब सी खुशी मिलती है. मेरी खुशियाँ ना बहुत बड़ी बड़ी नहीं है. वो रिपल्स देखना मुझे अच्छा लगता है. और बर्ड्स जो आसपास बैठे हैं, आप लोग चलते हुए जा रहे हैं तो वहाँ पे अब कितने बर्ड्स भी होते हैं, कितने डक और जितने भी मतलब प्राणी और जितने भी पक्षी वहाँ रहते हैं, और आप जा रहे हो वहाँ से एंड इफ दे आर लुकिंग एट यू, तो उनका हमारी तरफ देखना भी कितनी सुंदर चीज़ लगती है. आई डोंट नो, लाइक इज इट ओनली मी कि जिसको इतनी छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ होती हैं? आप भी ज़रूर अपने अनुभव बताइए. इमोशन ऑफ द डे भाई, चलिए तो मोटिवेट करते हैं आप सभी को. किशोर कुमार की आवाज़ में आपकी कसम से लिया है ये गीत आप सभी के लिए. इसके शब्द जो हैं ये आई एम श्योर आप सभी इसको या आप इसको कनेक्ट करेंगे.
0: Like our gold, sounding better than ever in the sunshine. This is Like a Gold. Emotion of the day.

0: latest update.
1: Episode number 27 is out to watch and to listen. Honor-based abuse, Deep Raja and Khush ne ise host kiya hai. The intense episode uncovers the harsh reality of honor-based abuse in our Desi communities. Kafi intense hoga ye episode, zarur dekhiyega. Like our extra podcast available on Spotify, YouTube, Amazon, Apple and other major streaming platforms.
0: Like extra is here.
1: Chaliye ek bar mila lenge ghadiyan, dekhte hain time kitna hua hai. 8:42. मुझे 35 के ऊपर थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है इसीलिए 3rd of August. ओ माय गॉड, सो दिस इज द 8th month ऑफ 2026. जो भी टारगेट अपने लिए सेट किया था इस साल, उस डायरेक्शन में काम काज शुरू किया है या नहीं भाइयों और बहनों? अगर नहीं किया हो तो शुरू कर लो. वक्त जो है वो इतना स्पीड में जा रहा है और ज़िंदगी में चाहे कुछ कांस्टेंट हो ना हो, चेंजेस बड़े कांस्टेंट होते हैं. जैसे मौसम में बदलाव होते हैं, हम में भी तो बदलाव आते जाते हैं. एंड एक्चुअली बदलाव होना भी चाहिए. वी ऑल शुड चेंज अकॉर्डिंग टू टाइप, क्योंकि जैसे हम हैं. मैं कई बार कई अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के साथ में जब गपियाती हूँ तब हम बात करते हैं कि आपके आदर्श, आपके उसूल, उससे आपको कितना फ़ायदा हुआ है वो देखिए. अगर आप खुश हैं तो खुश ही हैं, लेकिन क्या आपके आसपास के लोग खुश हैं? और वो जो कायदे और उसूल जो बनाए हैं वो किस ज़माने के थे, किस ज़माने में चल रहे हैं, ज़रा सोचिएगा. बिकॉज चेंज ना, इट्स रियली क्रूशल एंड होना चाहिए. ऐसे मेरा अपना विचार है, आपका क्या विचार है जरूर बताइएगा. नेक्स्ट ट्रैक, इट्स अ ब्यूटीफुल ट्रैक, आशा भोसले मोहम्मद रफी की आवाज में बहू बेगम से हम इंतजार करेंगे. आज का कलेक्शन डिफरेंट है ना, मजा आ रहा है.
0: दिस इज अश्विनी ऑन लाइक अ गोल्ड. travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाई ओपनिंग देयर 3rd branch ऑन 2 Ealing Road वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com.
2: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
0: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
2: विजिट travelhubworld.com.
3: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home, now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best gara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co. UK.
4: Dad.
5: What's wrong, beta?
4: The Indian rupee has skyrocketed and it's the best time to send money to Daddy in India.
5: I will run down to the money exchange now.
4: No, Dad, you can do it from your sofa. Download the Yono SBI UK mobile app and you'll get a fast service right from your phone.
5: Oi, bale bale. I'm going to tell all my friends to download the Yono SBI UK mobile app and take advantage of their competitive rates.
6: SBI UK regulated by the FCA and PRA.
7: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 kW बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150-2025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply.
8: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क है ना.
9: वेल शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स, क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन 4 मजेदार फ्लेवर्स.
8: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ.
0: लाइक अ रेडियो नेटवर्क प्राउड हॉस्पिटैलिटी पार्टनर रगासन. On this week's Leica Extra podcast, Kush and Deep Raja discuss honor-based abuse.
10: When people are going to get help, those additional perpetrators aren't necessarily being recognised. The primary perpetrator, the husband, was captured, but, you know, the rest of the key players behind the scenes weren't recognised. And we need to kind of be talking about this more so the professionals can catch, you know, all of the perpetrators of this abuse that carry it out.
0: Leica Extra is here.
11: Search for our podcast, Like Extra, on all major streaming platforms. Ashwini, brightening up your weeknights.

0: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM.
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
2: For £1, you'll get 128.06 Indian rupee, 373.19 Pakistani rupee, 450.92 Sri Lankan rupee, 165.84 Bangladeshi taka, 87.98 Afghan Afghani, 173.74 Kenyan shilling, 1.34 US dollars, 62.90 Mauritian rupee.
3: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LAIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
2: Gold is currently trading at £97.04 per gram.
1: Gold Race was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley.
2: देखो ना, टिक टिक करते हुए घड़ी कह रही, एक बार घड़ियां मिला लो. इट्स 52 मिनट्स हो रहे हैं नियरली, बस कुछ सेकंड बचे हैं. ठीक है, तो 52 मिनट्स पास्ट 8, आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर. आप लोगों के मैसेजेस, आप लोगों से इंटरेक्शन, आप लोगों से बातें करना इतना अच्छा लगता है. और जब आप लोग अपने लाइफ की स्टोरीज मुझसे शेयर करते हैं, मुझ पर भरोसा करके, थैंक यू सो मच. इट्स एन ऑनर टू बी पार्ट ऑफ ऑल दीज एक्सपीरियंसेस जो आप लोग हमें बताते रहते हैं. अच्छा, क्या आप जानते हैं कि यंग सर्जन्स हु प्रीवियसली प्लेड वीडियो गेम्स फॉर एटलीस्ट 3 hours अ वीक मेड 37% फ्यूअर एरर्स, वर 27% फास्टर एंड स्कोर्ड 42% बेटर ओवरऑल देन दोज हु नेवर प्लेड वीडियो गेम्स. मतलब कुल मिला के अगर आपका बच्चा सर्जन बनना चाहता है, उसको वीडियो गेम्स खेलने दो. देखा ना कितनी सारे परसेंटेज में वो बैठ जाएंगे. मतलब कुल मिला के वो अच्छा काम करेंगे. वीडियो गेम्स का फायदा होता है जब खेलते हैं तो. एंड कैन आई कन्फेस, मैंने एक्चुअली वीडियो गेम्स नहीं खेले. इज इट ओनली मी कि आप भी मेरे साथ में?
1: दिस इज लाइक अ गोल्ड. रेमिनिस दोस क्लासिक्स. दिस इज अश्विनी ऑन लाइक अ गोल्ड. This part of the show is brought to you by 108 Base Hospital, Uri. Starts 15th of August every Saturday and Sunday at 7 PM on Colors TV.
4: I hope Major Naina, हम लोग वक्त पर पहुंचे.
5: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए.
6: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
5: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी.
6: गारंटेड.
5: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे. साउथ हॉल ट्रेवल.
6: फोन 02085748410.
5: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410. एट ऑल प्रोटेक्टेड.
7: Location, location, location.
8: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
7: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
8: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
7: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
8: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
7: And the best part, townhouses and villas, Greens, start from just £711,000.
8: To book, call our London office on 02023963-5757. Greens by Danube. Prime location.
7: High appreciation.
8: In Dubai.
9: श्रावण के पवित्र महीने में करें भगवान शिव की आराधना. परम पूज्य संत श्री चिन्मयानंद बापू जी के श्रीमुख से सुनिए श्री शिव महापुराण कथा. 13 अगस्त से 19 अगस्त तक हिंदू सनातन मंदिर ईलिंग रोड वैमली में. समय दोपहर बाद 3 बजे से शाम 7 बजे तक. नित्य कथा और महाप्रसाद की पावन व्यवस्था का आनंद लें. शिव महापुराण का अपने पूर्वज माता पिता के नाम से मूल पाठ, डेली यजमान और सेवा के लिए संपर्क करें 07930271934.
10: From breathtaking wedding jewelry to the finest diamond rings, do come in and see us at Minar Jewelers to create the perfect symbol of your love story. Minar Jewelers, the diamond specialists. Call 02087672142.
11: The Evening Show with Ashwini.
3: Like a gold.
1: 7 stations. 1 podcast. 1 mobile app. Advertise on Leica Radio Network, offering the largest Asian radio and digital content in the UK. Call 0207 132 1458 or sales at leicamedia.co.uk. London, Midlands, Manchester. This is the Leica Radio Network.

0: Welcome. This is the third hour of the evening show with Ashwini on Laika Gold Radio in London and Laika Radio in Greater Manchester. क्या बात है, बहुत ही बढ़िया शुरुआत. दोनों ही गीत बड़े अमेजिंग. लम्हे फिल्म से सुनाया लता मंगेशकर एंड सुरेश वाडकर की आवाज में पहला ट्रैक, तो 90s वाले बच्चे खुश. एंड सेकेंड ट्रैक दिली नादा से लता मंगेशकर एंड किशोर कुमार की आवाज़ में चांदनी रात. ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ट्रैक्स. अगले भी ट्रैक्स जो आने वाले हैं वो आप सब बहुत एंजॉय करने वाले हैं. तो गजल या कव्वाली में क्या सुनाने वाली, जरा जल्दी लिख कर भेजिए. एंड बर्थडे एनिवर्सरीज के साथ में आज और भी कुछ मनाया जाता है उसके बारे में बात करेंगे बस कुछ ही देर में.
1: Ashwini, brightening up your weeknights. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: एक पाउंड के बदले आपको मिलेंगे 127 इंडियन रुपी एंड 65 पैसे. Don't forget to exchange in branch, online or SBI Yono mobile app. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and

0: सुहाग फिल्म से सुनाया आप सभी को ये गीत मोहम्मद रफी, शैलेंद्र सिंह, आशा भोसले की आवाज में। बड़ा मस्ती भरा गीत था ना ये, तेरी रब ने बना दी जोड़ी। 9:19, 3rd of August मंडे। तो आज किसी का बर्थडे होगा, किसी की एनिवर्सरी होगी, किसी की नौकरी लगी होगी, किसी की नौकरी का आखिरी दिन होगा, या किसी के लिए न्यूट्रल डे होगा। तो आज दुनिया जहां में और क्या मनाया जाता है, टेरी फॉक्स डे, फेस्टिवल मंडे, कॉमर्स डे, नेशनल ग्रैब सम नट्स डे, क्लीन योर फ्लोर्स डे, पिकनिक डे, एंटीएन नेशनल वाटरमेलन डे। अब वाटरमेलन के बारे में मुझे ऐसा लगता है कि इतने सारे फ्रूट्स हैं, लेकिन वाटरमेलन का ना अपना एक चार्म है, उसका अपना एक इम्पोर्टेंस है। इस पे आप वाटरमेलन पे चाट मसाला डाल लीजिए, थोड़ा सा सॉल्ट डाल लीजिए, और जब इसे आप खाते हैं तो इतना जूसी है, इतना हाइड्रेटेड रखता है, और समर्स में तो ये सबसे फेवरेट होता है हम सभी का। अच्छा, वाटरमेलन कितना मीठा होगा, कितना मीठा नहीं होगा, इसके लिए ज़रा आप गूगल कर लीजिएगा, क्योंकि उस पर आप लोगों को ज़रा ध्यान में आ जाएगा। क्योंकि कई बार हम उस वाटरमेलन की तरफ देख के समझ नहीं पाते कि ये कच्चा है कि पक्का है कि मीठा है, या फिर कोई टेस्ट ही नहीं है, है ना। बट आई जनरली लाइक टू ऐड लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट ऑन वाटरमेलन, या फिर चाट मसाला। आय हाय, ओह माय गॉड, सीरियसली, मतलब वाटरमेलन के बारे में सोच के माय सलाइवरी ग्लैंड्स आर गेटिंग एक्टिव, व्हाट्स हैपनिंग विद मी। अच्छा, बिस्वजीत जो है ये हमारे आर्टिस्ट ऑफ द वीक है। अभी ना अगले 3 गाने, अगर आप सोच रहे हैं कि हम अश्विनी को कहेंगे टाटा बाबा और निकल जाएंगे, तो अगले 3 गाने तो यू डोंट नो मिस देम। ठीक है, देखो सुन लो।
1: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Ever get giddy renewing your car insurance? Fantasize about finance offers or paying your service bill? Probably not. After all, the best bit about driving a BMW is driving it. So leave the admin and skip to the best bit. Choose a new BMW 1 Series or 2 Series Grand Coupe by the 30th of September to enjoy a year's insurance, 3 years servicing, plus 2.9% APR representative. Search BMW, skip to the best bit. BMW UK Limited is a credit broker, not a lender. BMW Finance, T's and C's apply. Insurance age restrictions and exclusions apply. Whew, that's the admin over with.
1: This is Ash Winnie on Leica Gold. This part of the show is brought to you by 108 Base Hospital Uri. Starts 15th of August every Saturday and Sunday at 7 PM on Colors TV.
3: I hope Major Naina, hum log waqt par pahunche.
4: Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410, and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
5: No more worries for me.
6: Southall Travel, at all protected. Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries, and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
7: Celebrate Diwali at the iconic Royal Albert Hall.
8: Join legendary singer Kavita Krishna Murthy
7: live on Sunday the 1st of November. An unforgettable evening of spectacular Bollywood and devotional songs
8: with the Royal Philharmonic Concert Orchestra.
7: Get your tickets from royalalberthall.com and sanathanevents.org. Brought to you by Sanathan Events.
8: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
9: When you go abroad, everyone knows the best way to make yourself understood is to say everything in English, but louder.
10: Four beers, please, garçon!
9: Just like when you amplify your advertising with radio. 40 million listeners every week get the message. See radio differently at radiocentre.org.
1: Leica Gold, London ka number one Asian retro music station. Ab available hai Greater London mein 10:35 AM par DAB digital radio par. Alexa pe bolo play Leica Gold aur online suno leicagold.com pe. Artist of the week is brought to you by our new podcast Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: भाई बता दें आपको, जो लाइव थियरी हम आपको सुनाते हैं इस शो में, उसका वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है. मेरा इंस्टाग्राम है रेडियो वाली अश्विनी, उस पर आप जाके जरूर देख सकते हैं. नेक्स्ट ट्रैक, ओ माय गॉड, बालिका पदुसी, अमित कुमार की आवाज में बड़े अच्छे लगते हैं.
0: दिस इज द लाइका रेडियो नेटवर्क अक्रॉस लंदन, मैनचेस्टर एंड द मिडलैंड्स.
3: Hey, this is Sandy Shah. Drive you home every Monday to Friday between 4 and 7 p.m. with the best tunes, mind games, and a bit of Ye Yavo. Only Leica Gold.
0: This is Ash Winnie on Leica Gold.
4: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com.
5: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस,
4: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
5: विजिट travelhubworld.com.
4: श्रावण के पवित्र महीने में करें भगवान शिव की आराधना. परम पूज्य संत श्री चिन्मयानंद बापू जी के श्रीमुख से सुनिए श्री शिव महापुराण कथा 13 अगस्त से 19 अगस्त तक हिंदू सनातन मंदिर ईलिंग रोड वेम्बली में. समय दोपहर बाद 3 बजे से शाम 7 बजे तक. नित्य कथा और महाप्रसाद की पावन व्यवस्था का आनंद लें. शिव महापुराण का अपने पूर्वज माता पिता के नाम से मूल पाठ, डेली यजमान और सेवा के लिए संपर्क करें 07930271934.
6: Location, location, location.
7: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
6: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
7: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
6: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
7: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
6: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
7: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Daniel. Prime location,
6: high appreciation
7: in Dubai.
8: Dad.
9: What's wrong, beta?
8: The Indian rupee has skyrocketed and it's the best time to send money to Daddy in India.
9: I will run down to the money exchange now.
8: No, Dad, you can do it from your sofa. Download the Yono SBI UK mobile app and you'll get a fast service right from your phone.
9: Oi, bale bale. I'm going to tell all my friends to download the Yono SBI UK mobile app and take advantage of their competitive rates.
10: SBI UK regulated by the FCA and PRA.
11: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply.
0: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Like a Gold, the perfect soundtrack for a British summer heatwave.

0: currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: For £1, you'll get 128.06 Indian rupee, 373.15 Pakistani rupee, 450.86 Sri Lankan rupee, 165.82 Bangladeshi taka, 88 Afghani, 173.74 Kenyan shilling, 1.34 US dollars, 62.92 Mauritian rupee.
2: Leica Radio.
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: Leica
0: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
1: Gold is currently trading at £97.22 per gram.
0: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visitors at Eastham, Hounslow or Crowley.
1: चलिए मिलाने की घड़ियां एक बार देखते हैं टाइम कितना हुआ है. इट्स 41 मिनट्स पास्ट 9. टाइम फॉर मी टू से टाटा बाय बाय. लेकिन उसके पहले गोल्ड नाइट्स ओवरनाइट सर्विस है, जरूर सुनिएगा लाइका रेडियो 90s, लाइका रेडियो पंजाबी, लाइका गोल्ड 2. एंड सुबह सवेरे आएगी हमारी काजल, उनका साथ दी दीजिएगा. एंड बस यही कहेंगे भाई, प्यार बहुत सुंदर चीज़ है, तो प्यार दो, प्यार लो. लाइफ सुंदर है, उसे कॉम्प्लिकेटेड ना बनाओ. कम्युनिकेट करो, आपका मन और आपका माइंड आके कोई रीड नहीं कर सकता अनटिल एंड अनलेस यू से व्हाट यू वांट. पावर तो किसी को बर्बाद करने के लिए चाहिए ना. आई एम श्योर आप लोगों में से कोई भी अपने पावर की यूज़ नहीं करता होगा. गजल या कव्वाली मैं क्या सुनाने वाली? मैं सुनाने वाली कव्वाली हम किसी से कम नहीं इस फिल्म से. एंड उसके पहले नमक हलाल से सुना रही हूँ आपको रात बाकी बात बाकी. कल आप और हम सेलिब्रेट करेंगे टेरिफिक ट्यूसडे. अगस्त महीने में आप और हम पहुँच चुके हैं. समय कहाँ बीतता है पता नहीं चलता, इसलिए अपने समय को इतना अच्छी तरीके से गुजारे कि जब भविष्य में आप उसे याद करें तो आप सोचें कि अय हय क्या बात है, मज़ा आ गया था, है ना. जैसे कि आपको मजा आता है इस शो में जिसका नाम है द इवनिंग शो विद अश्विनी ऑन लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर. अपना खूब ख्याल रखिए. लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय.
3: दिस इज लाइका गोल्ड.
4: दिस सुपरहिट सॉन्ग इज प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय टिल्डा बासमती राइस. डिस्कवर द सीरियस डिलीशियस पॉसिबिलिटीज विद टिल्डा.

किसे नहीं मरने दोगी? ये क्या हो गया तुम्हें है? तुम्हारे माथे पर पसीना क्यों? किसकी मौत के बारे में सोच रही थी? मेरी? अरे मेरी जिंदगी और मौत तो अब तुम्हारे साथ है, और प्यार करने वाले मौत से डरा नहीं करते।

0: प्यार बिना जीवन है टोटल फ्लॉप। पुण्य पाप के चक्कर में कोई बढ़ सके ना बच।
1: क्यों रे चले, झूठ कहा?
2: नहीं गुरुजी, सच।
0: थैंक यू वेरी मच। मन

0: भव सागर से वो तर जाएगा। मोटे अकल वाले ना समझे मेरी बात, बारीक है।
1: क्यों चले जी, गलत कहा?
2: नहीं गुरु जी, ठीक है।
1: मन को

0: है लाइका गोल्ड। दिस पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट टू यू बाय 108 बेस हॉस्पिटल उरी। स्टार्ट्स 15th ऑफ अगस्त एवरी सैटरडे एंड संडे एट 7 PM ऑन कलर्स टीवी।
1: आई होप मेजर नैना हम लोग वक्त पर पहुंचे।
2: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान,
3: देखिए दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम।
2: साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में लाके दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे।
3: तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410।
0: साउथ हॉल ट्रेवल at all protected.
4: Celebrate Diwali at the iconic Royal Albert Hall.
5: Join legendary singer Kavita Krishna Murthy
4: live on Sunday the 1st of November. An unforgettable evening of spectacular Bollywood and devotional songs
5: with the Royal Philharmonic Concert Orchestra.
4: Get your tickets from royalalberthall.com and sanathanevents.org. Brought to you by Sanathan Events.
5: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
6: Location, location, location.
7: In real estate, location is everything. And this one is a villa.
6: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
7: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
6: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
7: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
6: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
7: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
6: High appreciation.
7: In Dubai.
8: आपके घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है, इस दुख की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम संस्कार की सभी रस्में ओम फ्यूनरल केयर करके देंगे। कैंटन रोड वेस्ट लंदन और इल्फर्ड ईस्ट लंदन में ओम फ्यूनरल केयर्स वेल वर्स्ड प्रीस्ट्स कैरी आउट ऑल द राइट्स एंड रिचुअल्स इन इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल एंड अदर लैंग्वेजेस। कॉन्टैक्ट कीजिए कल्पेश पटेल ऑन 0208-922-3344-24-hour line.
0: Creative Team Events and Peace Nation UK brings to you the King of Sufi Music, Lakhvinder Vidali, to London and Birmingham this October. For sponsorship inquiries, call 07959-250-376.
9: Classic Nagme, aapke apne Leica Gold par.

0: Like our gold. This part of the show is brought to you by 108 Base Hospital Uri. Starts 15th of August every Saturday and Sunday at 7 PM on Colours TV.
1: I hope Major Naina, हम लोग वक्त पर पहुँचे.
2: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रेवल कीजिए. दिल की धड़कने बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाईलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए. आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू.
0: विजिट mantrahollidays.co.uk और कॉल 02037736333 नाउ. एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज. व्हाट्स your travel mantra.
3: Dad,
4: what's wrong, beta?
3: The Indian rupee has skyrocketed and it's the best time to send money to Daddy in India.
4: I will run down to the money exchange now.
3: No, Dad, you can do it from your sofa. Download the Yono SBI UK mobile app and you'll get a fast service right from your phone.
4: Oi, bale bale. I'm going to tell all my friends to download the Yono SBI UK mobile app and take advantage of their competitive rates.
5: SBI UK regulated by the FCA and PRA.
6: Weddings, celebrations, corporate events, ragas and sab kuch एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasun.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन.
7: सारी रात बॉलीवुड क्लासिक्स का साथ सिर्फ लाइका गोल्ड पर.

0: लाइका गोल्ड।
1: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान, देखिए दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410।
2: साफो ट्रेवल, auto protected.
3: Location, location, location.
4: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
3: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
4: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
3: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
4: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
3: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
4: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube, prime location,
3: high appreciation
4: in Dubai.
5: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड, और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। टीज एंड सीज अप्लाई।
2: मेगा ब्लॉकबस्टर धुरंधर, Mega Blockbuster Dhurandhar, 15th and 16th of August at 9 PM on Utsav Gold. Title sponsor Watchdog Security, associate sponsor Lemfi.
6: Ears are great, aren't they? One on each side of your head for stereo. It's because of ears that radio ads can amplify your advertising. 40 million adults listen to commercial radio every week. That's 80 million ears, give or take. See radio differently at radiocentre.org.
7: लाइका गोल्ड पर हर रात की यही रीत, पुराने मगर सदाबहार गीत।

0: Network across London, Manchester and the Midlands.
1: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410।
2: साफो ट्रेवल, at all protected.
3: Celebrate Diwali at the iconic Royal Albert Hall.
4: Join legendary singer Kavita Krishna Murthy
3: live on Sunday the 1st of November. An unforgettable evening of spectacular Bollywood and devotional songs
4: with the Royal Philharmonic Concert Orchestra.
3: Get your tickets from royalalberthall.com and sanathanevents.org. Brought to you by Sanathan Events.
4: Exclusive radio partner, Laika Radio Network.
5: Sari Raat, Bollywood Classics ka saath. Sirf Laika Gold par.

मुझको गुस्सा ना दिला, तुझसे फरियाद करूं, ले तेरे पाँव परूं, कहना मेरा मान ले तू, ये भी अब जान ले तू, ये भी अब जान ले तू, जान ले तू, जान ले तू। थाकी गयो फरी पर नहीं समझ तो बेशरम। हाँ अब भी अगर तू चुप ना हुआ तो